और कंपनी ने 1:30 बजे सेटल किया, मैं 2 बजे घर आया। इससे फास्ट नहीं हो सकता, गवर्नमेंट का भी कोई पॉलिसी होगी वो भी नहीं करेगा। जितने स्टार्ट में आज के इंडिया में नंबर वन पे, इसके चक्कर में भी कोई पॉलिसी नहीं, पर पॉलिसी हमेशा चलती है। यदि आप पॉलिसी रन कर रहे हो तो वो पूरी कंपनी आपके साथ खड़ी है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वो पूरा आपके साथ खड़ा है, आपके उस बुरे वक्त में जहाँ अपने साथ छोड़ दिया वहाँ भी खड़ा। अब इससे ज़्यादा क्या लीजिएगा।

0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की अपील होगी कि कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है महाराज जी, कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त है। पानी के टंकी में भ्रष्टाचार है, पुल में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है, गेहूँ के खरीद में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक में भ्रष्टाचार है, खाने में भ्रष्टाचार है, GM ऑफिस में भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि आपके ऑफिस तक में भ्रष्टाचार।
1: उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें जरूर जाँच कराएगी और जो इसके लिए दोषी उनको सजा

0: मोदी जी, ये एक तो गॉड है या एक तो फ्रॉड।
1: शायद ऐसे ही पुल हादसों पर मशहूर जनगीतकार शरद जोशी ने लिखा है कि हमारे देश में पुल इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि नदियां उनके नीचे सिस्टम। आप समझ सकते हैं कि अपनी चुटीली भाषा और शब्दों की धार से उन्होंने कैसे सिस्टम पर करारा प्रहार किया। SDRF ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश में तेज आंधी आई। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 90 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल को तेज हवाओं का पता नहीं था, इसीलिए वो बेपरवाह खड़ा था। नतीजा ये हुआ कि तेज हवाओं के आगे वो टिक नहीं पाया। पुल का कुछ हिस्सा जमीन पर आ गया। मजदूरों की गलती ये रही कि वो उस पुल के नीचे आ गए। उन्हें पता होना चाहिए था कि हमारे देश में पुल टिकने की कोई गारंटी नहीं है। ये पुल बेतवा नदी पर मोरा कंदर और कुरारा गांव को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। अब जिन मजदूरों की इस हादसे में मौत हुई उनके घरों में मातम है। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पुल गिरने की खबर तो बस इतनी सी है, लेकिन सवाल कई है। जैसे क्या पुल इतनी मजबूती के साथ बनाया जा रहा है कि तेज हवा में ही कुछ हिस्सा उसका गिर गया? क्या पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया था जिससे मजदूरों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके? सवाल यहां पर यह भी कि जब गुरुवार को यूपी में तेज हवा का अलर्ट था तब भी क्या पुल पर काम चल ही रहा था? बड़ा सवाल यहां यह भी है कि क्या यह हादसा यूपी सेतु निगम में अधिकारियों के भ्रष्टाचार का परिणाम है? क्योंकि पुल 2027 के चुनाव से करीब 9 महीने पहले गिरा है। इसीलिए विपक्ष ऐसे तमाम सवाल योगी सरकार से पूछ रहा है। इन सवालों की चर्चा करने से पहले आपके ग्राउंड से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश पांडे की इस रिपोर्ट में पुल के गिरे हुए हिस्से से लेकर उसमें इस्तेमाल हो रहे लोहे के सरिये तक हर चीज की बारीकी से पड़ताल।

सवाल है कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो निर्माण में क्या कमियां थी, क्या ये पुल आंधी का दबाव नहीं झेल पाया जिसके कारण ये जमींदोज हो गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये सब कुछ आपके सामने, देखिए अंदर ये गिरे हुए लोहे की ये जो बने हुए आकृतियां हैं, जो सामान है आपको हम ये दिखा रहे हैं।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

जय झूलेलाल। सिंधियत जी सुरहाण में हाजिर आया तव्हां जी रेडियो साथी मां चित्रा चेलानी। तव्हां सभिनी खे मुंहिंजी सिक भरी नमस्ते। साथियों, धर्माऊ महीनो हली रहियो आहे, जंहिंखे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास बि सॾिजे थो। शास्त्रनि मूजिबि इन महीने में विर्त, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन ऐं ध्यानु करण सां सभिनी ॾुखनि जो नास थींदो आहे। भगवद गीता, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा ॿुधण जो बि अद्भुत फल मिलंदो आहे। अचो त अॼु कार्यक्रम जी शुरूआति बि असीं परमात्मा जे ध्यान सां कयूं ऐं पंहिंजे इष्ट देव साईं झूलेलाल जो ई भॼन ॿुधूं।

दोस्तों 31 मई 1725 में महाराष्ट्र जे चौंडी गोठ में जन्म थियो हो अहिल्या बाई जो। अहिल्या बाई जो संग मालवा जे राजा मल्हार राव होलकर जे पुट खांडेराव होलकर सा थियो हो। 1754 में पतिए जी लड़ाई में मौत खां पोए अहिल्या बाई के सहुरे मल्हार राव जो मार्गदर्शन मिलियो ए 1767 में मल्हार राव जी मौत खां पोए हुन मालवा राज जी कमान झली। लोकमाता अहिल्या बाई होलकर सोनहरे अखरन में लिखियल एक अहड़ो नालो आहे जैं राजपाट के पंहिंजे भोग जो वसीलो न पर शेवा जो साधन बणायो। उन दौर में जड़ी केतरियों ही जायफाऊं घर जी चार दीवारिया में सिमटियल हुयूं तड़ी अहिल्या बाई न रुगो मालवा साम्राज्य जी वागू झलियूं पर पेंजी प्रशासनिक सूझबूझ सा राज के खुशहालिया जी चोट ते पहुंचाए। संदस दरबार न्याय जो स्थान हो। तवारी गवाह आहे त कानून तोड़न ते हुन पेंजे माइटन के भी सजा देण में हबक न कई। उन्हनि जी आर्थिक दूरदर्शिता जी शाहिदी इन ॻाल्हि मां मिले थी जो हुननि महेश्वर खे पंहिंजी राजधानी बणायो। इन सां उतां जे जुलाहनि खे आसिरो मिलियो ऐं महेश्वरी साड़ीअ जो कमु हज़ारे कुटुंबनि जे अटे लटे जो ज़रियो बणियो। अहिल्या बाई ज़ाइफ़ाउनि लाइ बि केतिरा ई कम कयाई जीअं ज़ालुनि खे जागीर में हक़ु ॾियारण, बेवा ज़ालुनि खे ॿार गोद वठण जो हक़ु ॾियारण वग़ैरह। अहिल्या बाई मालवा जी राणी हुई पर संदसि दिल सॼे भारत लाइ धड़कंदी हुई। परॾेही हमलावरनि हथां ठाहियल केतिरनि ई मंदरनि धर्मशालाउनि जो हुन जीर्णोद्धार करायो। हुन तलवार जे ज़ोर ते न पर त्याग ऐं पुनर्निर्माण ज़रिए भारत जे नक्शे ते हिकु अमिट छाप छॾी। संदसि जीवन अॼु बि सभिनी लाइ

हिकु मिसाल आहे। अॼु अहिल्या बाई होलकर जयंती जे ॾींहुं उन्हनि जे चरणनि में असांजो नमन आहे। साथियो, इन्हे सां गॾु ई अॼु 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस बि आहे। हीउ ॾींहुं मल्हाइण जो उद्देश माण्हुनि में तंबाकू सां थियण वारनि जानलेवा नुक़सान बाबति सुजाॻी आणणु ऐं तंबाकू छॾण लाइ प्रेरित करणु आहे। तंबाकू जो सेवन अॼु कंहिं वैश्विक महामारी खां घटि न आहे। बीड़ी, सिगरेट, गुटका ऐं खैनी जहिड़ी शयूं रुगो इंसान जे शरीर खे ई नुक़सान नथियूं कनि, पर केतिरनि ई खिलंदड़ कुटुंबनि खे बि तबाह कंदियूं आहिनि। इन गंभीर मसइले ॾांहुं ध्यानु छिकण लाइ विश्व स्वास्थ्य संगठन माना WHO पारां साल 1987 में हीउ ॾींहुं मल्हाइण जी शुरूआति कई वई। तंबाकू में निकोटीन ऐं ॿिया नुक़सान कंदड़ रसायन हूंदा आहिनि, जिन सां कैंसर, दिल ऐं फेफड़नि जी बीमारियूं थियण जो ख़तरो रहंदो आहे। ख़ासि ॻाल्हि आहे त जॾहिं को माण्हू धूम्रपान कंदो आहे त हू रुगो पाण खे न पर पंहिंजे आसे पासे वेठल हर माण्हूअ खे ख़तरे में थो विझे, जंहिंखे पैसिव स्मोकिंग चइजे थो। साथियों, तंबाकू निषेध हिकु ॾींहं जो न पर सॼे जीवन जो संकल्प हुअणु खपे। अचो त असीं सभु इहा पह कयूं त न त तंबाकू वापराईंदासीं ऐं न ही पंहिंजनि खे वापराइणु ॾींदासीं। तंबाकू खे न ऐं ज़िंदगीअ खे हा चवंदासीं। ऐं हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ, छो त असांजे नंढड़नि नंढड़नि ॿारनि जी स्कूल जी छुटियूं हली रहियूं आहिनि, त पेश आहे भगवंती नावाणी ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ॿारनि जो ही गीत।

0: दोस्तों हाणे वक्त आहे अॼु जी ॿी ज़रूरी ॼाण जो। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मल्हायो वेंदो आहे। कुदरत असांखे छा न ॾिनो आहे, वहंदा झरणा, झलंदा झंग, नीरो उभ ऐं चहकंदड़ पखी। पर आधुनिकरण जे इन दौर ऐं तरक़ीअ जी अंधी भज भजा में असीं कुदरत जे इन सींगार खे विञाए वेठा आहियूं। प्रदूषण मार कई आहे, हवा में वहंदो धुओं ऐं नदियुनि में वहंदो किचरो धरतीअ जा ज़ख़्म बणिजी पिया आहिनि। ग्लोबल वॉर्मिंग ऐं बदिलियल मुंद इन्हीअ ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त जेकर असां हाणे बि न संभलियासीं त आईंदह भयानक थी सघे थो। असां सभई गर्मीअ जी मार ॾिसूं ई पिया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जा ही अखर आहिनि त कुदरत वटि हर माण्हूअ जी ज़रूरत पूरी करण लाइ सभु कुझु आहे, पर लालच पूरी करण लाइ न आहे। दोस्तों असांखे इहो समुझणो पवंदो त असीं कुदरत जा मालिक न आहियूं ऐं पर्यावरण जी सार संभाल कंहिं सरकारी योजना जी मोहताज न, पर असांजी आदत हुअणु घुरिजे। पर्यावरण दिवस ते असीं रुगो भाषण ॾेई या ॿुधी वेही न रहूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तब्दीलियूं आणियूं, वण पोखियूं ऐं उन्हनि जी संभाल कयूं। प्लास्टिक घटि में घटि वापरायूं, पाणी न विञायूं, अपसाइक्लिंग ऐं रीसाइक्लिंग ॾांहुं रुख कयूं। नंढा नंढा क़दम वॾी क्रांति आणे सघनि था ऐं सुजलाम सुफलाम जो सुपिणो सच थी सघे थो। दोस्तों इन्हीअ मौज़ूअ ते विशेष ॼाण ॾियण लाइ आकाशवाणी भोपाल में अॼु असां सां जुड़ियल आहिनि वार्ताकार सरिता खयानी जी। अचो त ॿुधूं था उन्हनि खां इहा विशेष वार्ता।
1: जय झूलेलाल भावरो ऐं भेनरो, मां सरिता खयानी तव्हां सां रूबरू आहियां। अॼु असां चर्चा कंदासीं पर्यावरण ते। त सभिनी खां पहिरियों पर्यावरण जो मतिलबु छा आहे? पर्यावरण जो मतिलबु आहे परी प्लस आवरण। परीअ जो मतिलबु हूंदो आहे पृथ्वी ऐं आवरण जेको सॼी पृथ्वीअ जे सभिनी पासनि खां घेरे रहियो आहे उहो आहे आवरण। सवली भाषा में चइजे त पृथ्वीअ ते जो बि मौजूदु आहे उहो ई पर्यावरण आहे। असांजे आसे पासे जे वातावरण खे ही पर्यावरण चइबो आहे। पर्यावरण में जैविक ऐं अजैविक सभई ईंदा आहिनि। जैविक माना जिन में जान आहे, जेके बि जीवित आहिनि, जीअं त वण टण पखी कीड़ा माकोड़ा जानवर ऐं असां माण्हू बि ईंदा आहियूं। अजैविक में उहे ईंदा आहिनि जेके जीवित न आहिनि, माना नदियूं, पहाड़, हवा, पाणी, पृथ्वी, ये सब। पर्यावरण ठहंदो आहे चार मंडलनि सां: जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। इन सभिनी खे पर्यावरण चइबो आहे। जलमंडल में जल, जलीय पौधा, जलीय जीव जंतु ईंदा आहिनि। वायुमंडल में घणेई प्रकारनि जी गैसूं हूंदियूं आहिनि, धूल जा नंढा नंढा कण, पखी, इहे सभई ईंदा आहिनि। स्थल मंडल में इंसाननि जी ठहियल शयूं ऐं सभई स्थल जी प्राकृतिक शयूं ईंदियूं आहिनि। ऐं जैव मंडल में सभई जीवित ईंदा आहिनि। जंहिं जॻह ते पाणी, हवा, ज़मीन इहे सभु हूंदा आहिनि, उते ई जैव मंडल हूंदो आहे। हिननि सभिनी मंडलनि खे मिलाए करे ठहंदो आहे पर्यावरण। पर्यावरण खे असां ॿिनि भाॻनि में वंडी सघंदा आहियूं: प्राकृतिक यानी जेके भॻवान ठाहिया आहिनि, पाणी, हवा, जीव जंतु, वण, पृथ्वी, पहाड़, नदियूं, समुंड ऐं अलाए छा छा। ॿियो आहे अप्राकृतिक शयूं जिन खे इंसान ठाहियो आहे, जीअं रोड, मकान, गाॾियूं, हवाई जहाज ऐं ॿिए बि घणेई शयूं। पर्यावरण जो असांजे जीवन में ॾाढो महत्व आहे। असांखे पर्यावरण सां ऑक्सीजन, पाणी, फल, अनाज, खाधे जी हर शइ मिलंदी आहे। असांजे जीवन

जे लाइ ज़रूरी आहे शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, प्रकृतिअ सां मिलण वारा फल अनाज। पर अफ़सोस, पर्यावरण में प्रदूषण फैलिजी रहियो आहे। आख़िर इहो प्रदूषण अचे किथां थो? इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। हा, तव्हां सही ॿुधो, इहो सभु असां करे रहिया आहियूं। जंगलनि जे वणनि खे कटे रहिया आहियूं। उहे वण जेके असां खे साह खणण जे लाइ ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि ऐं असां खे नुक़सान पहुचाइण वारी कार्बन डाइऑक्साइड खे एब्ज़ॉर्ब कंदा आहिनि। इहो ई न, बारिश जे मौसम में बोड अचण खे रोकींदा आहिनि। फैक्ट्रीज़ जा निकरण वारो धुओं ऐं ज़हरीली गैस हवा में मिली रही आहे, हवा खे प्रदूषित करे रही आहे। असां रुगो वायुमंडल खे ई प्रदूषित न करे रहिया आहियूं, बल्कि जलमंडल खे बि प्रदूषित करे रहिया आहियूं। जल असांजे शरीर जो 70% हिसो आहे। खाधे जे बिना इंसान वरी बि रही सघे थो, पर जल जे बिना हिकु ॾींहुं बि नथो रही सघे। पर असांजी ठहियल फैक्ट्रीज़, केमिकल्स मिलियल पाणी नदियुनि में विझी करे नदियुनि जे जल खे प्रदूषित करे रहिया आहिनि। स्थल मंडल बि प्रदूषण सां बचियल कोन्हे। ज़मीन में घणेई केमिकल्स ऐं पॉलीथिन विझी करे असां ज़मीन खे प्रदूषित करे रहिया आहियूं। पर्यावरण खे संरक्षण जी ज़रूरत आहे। इहो सभिनी खां पहिरियों महसूस कयो वियो 1972 में। स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में वैश्विक स्तर ते हिकड़ो सम्मेलन रखियो वियो। हिन सम्मेलन में घणेई देशनि भाग वरितो ऐं पर्यावरण संरक्षण जी मुहिम हलायऊं। ही सम्मेलन 5 जून 1972 जो थियो। इन करे ॿिए साल 5 जून 1973 खां 5 जून खे पर्यावरण दिवस जे रूप में मल्हाइण जी घोषणा कई वई। स्टॉकहोम जे सम्मेलन खां 20 वर्ष खां पोइ 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन थियो, जंहिंमें एजेंडा 21 रखिया विया। इन करे इन सम्मेलन खे रियो 21 बि चयो वेंदो आहे, जंहिंमें असांजे भविष्य खे बचाइण जे लाइ छा छा उपाय कजनि, इहो वीचार कयो वियो। हिन सम्मेलन में 2 संगठन ठहिया, हिकड़ो UNFCCC, ॿियो कॉप। कॉप जी बैठक हर साल थींदी आहे। हिन बैठक में पर्यावरण खे कीअं बचायो वञे, इन जी चर्चा बि थींदी आहे ऐं बचाव जा उपाय ऐं कारण, इहे सभई वीचार कया वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि ते कीअं अमल कजे, इहो सोचियो वेंदो आहे। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थी ओज़ोन परत जे बारे में। ओज़ोन जी परत पृथ्वीअ खे सिज जी पराबैंगनी किरणनि खां बचाईंदी आहे। पराबैंगनी किरणनि खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे ऐं हीअ पराबैंगनी किरणूं असांजे लाइ तमामु नुक़सान वारियूं आहिनि। पर 16 सेप्टेम्बर 1987 में मॉन्ट्रियल में हिकड़ो सम्मेलन थियो। हिन में सभिनी खां पहिरियों इहो रखियो वियो कि ओज़ोन जी परत जेका आहे असांजी रक्षा कंदी आहे उहा सन्नी थींदी थी वञे, हुन में टुंग थी विया आहिनि ऐं उन खे रोकण जे लाइ छा करणु घुर्जे, इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾिनो वियो। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण जो कारण कुझु नुक़सान पहुचाइण वारी गैसेस आहिनि, उन में ख़ासि करे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस आहे। ओज़ोन जी परत सां रिएक्ट करे इहे ज़हरीली गैसूं उन खे सन्हो कंदियूं वेंदियूं आहिनि ऐं ओज़ोन जी परत जे सन्हे थियण सां ग्लोबल वार्मिंग वधी रही आहे। इहे जेके अल्ट्रावॉयलेट किरणूं आहिनि जेको ओज़ोन जी परत उन खे एब्ज़ॉर्ब करे वठंदी आहे, उहे असांजे लाइ तमामु ख़तरनाक आहिनि। उन्हनि सां त्वचा जो कैंसर, त्वचा जी बीमारियूं, मोतियाबिंद, इहे सभु वधी सघनि था। यूवी किरण जिन खे ओज़ोन परत एब्ज़ॉर्ब कंदी आहे, जीव जंतु ऐं पौधनि ते बि असर करे सघे थी। पर्यावरण जे संरक्षण जी कोशिश सॼे विश्व में थी रही आहे। असांजी सरकार बि संरक्षण जे लाइ कम करे रही आहे, पर रुगो सरकार ही न, असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे शुद्ध रखण जे लाइ कोशिश कयूं। असां सभई कोशिश कयूं त कुझु वण लॻायूं ऐं
पॉलिथिन

0: जो उपयोग करण बंद कयूं। असां सभई पर्यावरण जो संरक्षण कंदासीं त पर्यावरण शुद्ध रहंदो। असां पंहिंजे जनम ॾींहं ते हिकु पौधो ज़रूर लॻायूं। जेके शादीशुदा आहिनि उहे पंहिंजी शादीअ जी वर्षगांठ ते बि पौधो लॻाइनि। रुगो पौधो लॻाइणो कोन्हे, उन जो ध्यानु बि रखणो आहे, जीअं इहे पौधा वॾा थी करे पर्यावरण जे प्रदूषण सां पर्यावरण खे प्रदूषण सां बचाइनि। सरकार पंहिंजी कोशिशि करे रही आहे, पर असांजी बि ज़िमेदारी आहे त असां पर्यावरण खे बचायूं ऐं स्वस्थ जीवन जीयूं। पर्यावरण स्वच्छ हूंदो त असांजो जीवन बि स्वस्थ हूंदो।
1: महिरबानी सरिता जी हिन जानकारी लाइ। ऐं दोस्तों, हाणे हलंदे हलंदे अचो त कार्यक्रम में मज़ो था माणियूं कमला केसवानी ऐं कला हज़ारी जी आवाज़ में हिन सुहिणे गीत जो।

दोस्तों, हिन गीत सां गॾु ई असांजे अॼु जे कार्यक्रम जो वक़्तु बि समाप्त थो थिए। उमेदु आहे त तव्हांखे कार्यक्रम ज़रूरु वणियो हूंदो। पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजा राया असां ताईं ज़रूरु पहुचाईंदा आकाशवाणी भोपाल जे फेसबुक पेज ज़रिए। हाणे पंहिंजी रेडियो साथी चित्रा चेलानी खे

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी का, वाचन स्वर शरद बाघेला की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। नौतपा के अंतिम दौर में नर्मदापुरम जिले में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को बादल छाने और हल्की हवाएं चलने से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून से पहले बाढ़ प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने और क्विक रिस्पांस टीम गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपदा की स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य के लिए होमगार्ड विभाग को उपकरणों की जाँच करने और स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयाँ और एम्बुलेंस तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 3,94,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसके मुकाबले 5,83,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन हुआ। गेहूं बेचने वाले किसानों को 1,507,64,00,000 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक 947,51,00,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन के लिए 25 मई से किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। सेठानी घाट पर आम महोत्सव में जिले के निजी क्षेत्र, शासकीय फर्मों और प्राकृतिक रूप से उत्पादित आमों की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली, मल्लिका, चौसा, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, हिमसा, बादामी, सफेदा और मालगोआ सहित अनेक प्रजातियों की विशेषताओं और स्वाद की जानकारी लोगों को दी गई। सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नर्मदापुरम जिले के कई अधिकारियों

प्रदेश के टॉप 5 और टॉप 10 में स्थान बनाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नर्मदापुरम जिले में जनजाति समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से जिले में संचालित जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले IEC अभियान के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई और शिविरों का आयोजन कर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाते और वनाधिकार पट्टों से संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में 315 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें 299 भारतीय गिद्ध, 11 सफेद गिद्ध और 5 सफेद पीठ वाले गिद्ध शामिल हैं। पिछले वर्षों में यह संख्या 280 से 290 के बीच रही थी। गंगा दशहरा के अवसर पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नर्मदापुरम के विवेकानंद घाट पर श्रमदान कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम आवरी में कलश यात्रा, जन संवाद और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं और जन हानि में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत नर्मदापुरम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सूचीकरण का कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। इस अभियान में प्रत्येक मकान का विवरण मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध हो सके। स्थानीय निकायों के माध्यम से पूर्व में ही सभी मकानों पर नंबर अंकित किए जा चुके हैं, जिसके आधार पर अब सूचीकरण का कार्य प्रगति पर है। जनजातीय बाहुल्य विकासखंड केसला में 1 माह का ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हुआ। शिविर समन्वयक आरती शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न खेलों सहित नियमित योगाभ्यास भी कराया गया। नर्मदापुरम जिले में आज से विश्व तंबाकू निषेध दिवस से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में विश्व पर्यावरण दिवस के तहत रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रियों और आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत जिले भर में घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान चलाया जा रहा है। नियमित योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज सिंह यादव ने बताया कि अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोग योग शिविरों में हिस्सा ले चुके हैं। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अगली पेशकश हरिहरन की आवाज में।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ
1: एडमिशन कराने?
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वे पर यह आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। सुबह के 10:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में मन की बात प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता से सीधा संवाद का प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और अब हम आपके दिल का मेल बॉक्स यहीं पर बंद करते हैं। कुसुम को दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: इन बैंक
1: आरबीआई कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100

0: को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहां गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ

हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जाने बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा

अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां तीन दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले

0: दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूं गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि मां भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रीय मानांकनानि भग्नानि जातानि। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके इत्यसौ तेजस्विन शंकरः देवमीणा कुलदीप

इस गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। नेपाल बैलेट सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने इसी गीत को सुनना चाहा था। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सिलसिला से। स्वर हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है शिवहरी ने।

इस गीत को सुनना चाहा था कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को सुनना चाहा था शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कुर्बानी से। आवाज है कंचन मनहर उदास और आनंद की। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ से हरदेवी का, बलविंदर मीका, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने

0: कुर्बानी फिल्म के इस गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल
2: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

पिछली कड़ी में आपने सुना मुश्ताक सायरा को लिए बिना वापस लौट जाता है। फजी मुश्ताक से सायरा को ना लाने की वजह पूछती है। कुछ दिनों बाद लोगों की कानाफूसी सुनकर वो मुश्ताक को दोबारा भेजती है। और अब आगे।

0: अरे फाता, करीम ने खबर भेजी है कि सारे को भेज दूं।
1: सारे को भेज दूं? वो क्या बोझ है हम पर? भेज दूं? अरे सारे को बुलाना ही है तो खुद आते या मुश्ताक को ही भेजते?
0: फाता, तुम हर बात उल्टी ही क्यों लेती हो?

0: सारे उनकी बहू है और उन्होंने मुश्ताक को भी भेजने की बात कही है। मुश्ताक आए तो सारे को भेज देना।
1: सलाम अब्बू।
0: अरे अरे आओ बेटा आओ, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी।
1: सलाम अब्बी।
0: सलाम, खुदा सलामत रखे। फाता, सारे को बोल चाय बना लाए।
2: बोलती हूँ।
1: आपको अब्बू का पैगाम तो मिल गया होगा।
0: हाँ बेटा, हाँ मिल गया, और अभी उसी पर बात हो रही थी।
1: अच्छा,
0: इशारे को कैसे भेजा जाए। अब तुम आ ही गए हो तो साथ ही लेते जाना।
2: कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। अभी ऐसी भी क्या जल्दी है कि सारे को ले जाओगे? कुछ दिन मायके में रहती तो उसे भी थोड़ा आराम हो जाता। वहां जाकर तो गृहस्थी की चक्की में पिसना ही है।
0: वाता, सारे को बोल तैयार हो जाए।
2: अरे मुश्ताक, पहले सारे से तो मिल ले, फिर जाने की बात तो हो ही जाएगी।

0: लीजिए, चाय लीजिए।
1: हाँ, सारे तुम ठीक हो?
0: हाँ ठीक हूं।
1: तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है।
0: मुझे मुझे आपसे बात करनी है।
1: क्या?
0: मेरी बात को जरा आराम से सुनना होगा।
1: अरे पहले बात तो कहो।
0: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती।
1: क्या मेरे साथ नहीं जा सकती? पर क्यों?
0: मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं।
1: उस घर में नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मुश्ताक, हमारी उम्र ही कितनी है कि मैं अपने को घर गृहस्थी में झोंक दूं?
1: सारे घर गृहस्थी संभालने को तुम एक भार समझ रही हो? हमारा घर ही कितना बड़ा है, 4 लोगों का परिवार है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं?
0: मुश्ताक, मैं परिवार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन अपना परिवार हो ना।
1: अपना परिवार? तो क्या वो हमारा परिवार नहीं है जिसमें हम रहते हैं?
0: परिवार तो मियां बीवी से बनता है मुश्ताक।
1: सारे तुम्हें तुम्हें क्या हो गया है?
0: देखो, अगर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी।
1: सारे बात मानने या ना मानने की नहीं है, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है।
0: इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते।
1: सारे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं?
0: तो तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम एक अलग घर में प्यार से रहेंगे मुश्ताक।
1: सारे क्या हम उस घर में प्यार से नहीं रहते? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है और तुम ये कैसे सोच सकती हो?
0: मुश्ताक, मैं कुछ और नहीं जानती। तुम्हें अलग घर लेकर रहना ही होगा।
1: सारे ये जिद गलत है। तुम शायद परिवार की अहमियत को नहीं समझती, और जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा भी होती है और परिवार उसका आधार होता है।
0: मैं अपना परिवार चाहती हूँ मुश्ताक, सिर्फ मैं और तुम, बस।
1: सारे तुम्हें उस घर में क्या मेरे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते?
0: करते होंगे, पर मैं अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मुश्ताक।
1: तुम समझने की कोशिश करो।
0: मैं बस इतना जानती हूँ मुश्ताक कि अगर तुम अलग घर लेकर रहने को तैयार हो तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। नहीं तो
1: सारे सारे मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को कैसे छोड़ दूं? मेरे अम्मी

0: अबू की जिम्मेदारी मुझ पर है और ऐसा करना मुझे किसी भी सूरत में पसंद नहीं।
1: तो तुम ये समझते हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी संभालने में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं?
0: सारे क्या कि अम्मे अबू को संभालना अपने जीवन को नष्ट करना होता है? ये तुम्हें क्या हो गया है? ये ख्याल तुम्हारे जहन में आ भी कैसे सकता है?
1: मुश्ताक, मैं तुमसे बहस नहीं करती। तुम अपने अम्मी अब्बू को कहाँ कैसे रखते हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और एक बात और सुन लो कि जब तक तुम्हारे अम्मी अब्बू उस घर में हैं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी।
0: सारे ये तुम नहीं कह रही, मेरी सारे ऐसी नहीं जो परिवार को ठुकरा दे, मुझे अपनों से अलग कर दे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कह सकती, वो नहीं कह सकती कि मैं उन अम्मी अब्बू को छोड़ दूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। अपनी जिम्मेदारियों से मुकरने को मेरी सारा नहीं कह सकती, वो मुझसे प्यार करती थी।
1: मुश्ताक, सारे आज भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर नहीं रुक सकते थे क्या? पर तुम नहीं रुके और अब भी तुम मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
0: सारे मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ?
1: तुम मुझे प्यार नहीं करते। अगर करते होते तो मेरे कहने पर तुम एक रात मेरे घर रुक सकते थे, पर तुम नहीं रुके और तुम अब भी मेरा कहना नहीं मान रहे। इसका एक ही मतलब है मुश्ताक, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते।
0: सारे समझने की कोशिश करो।
1: तुम्हें बताना होगा मुश्ताक कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं।
0: सारे

0: अरे कुछ बताए भी, अरे बोल तो सही।
1: हाय हाय, मार डाला मेरी फूल सी बच्ची को। अरे सुनो रे लोगों सुनो, मार डाला मार डाला।
2: अरे ओ फाता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो?
1: मेरी फूल सी बच्ची।
2: अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
1: मार डाला मार डाला।
2: किसको मार डाला, किसने मार डाला?
1: हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
2: साफ साफ बता कि हुआ क्या है।
1: सारे, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ सारे को?
1: हाय भाग फूट गए उसके, हाय मेरी बच्ची।
2: क्या हुआ उसे?
1: सारे का तो जीवन ही बर्बाद हो गया। मैं क्या जानती थी कि मेरे भाई का लड़का ऐसा निकलेगा, मेरे ही सारा को मारा।
2: सारे को मारा?
1: हाय या अल्लाह।
2: लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना?
1: अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों से सारे यहीं रह रही थी। मेरे बीमार होने पे आई थी, सो मुश्ताक को पसंद नहीं था।
2: अरे फाता, ऐसा भी क्या कि कोई इस बात के लिए अपनी ही बीवी को मारे?
1: अरे मर्दों का क्या है, वो तो चाहता ही है कि औरत उसके गुलाम बन कर रहे।
2: सुना है कि मुश्ताक इससे पहले भी सारे को लेने आया था।
1: अरे

0: इसीलिए तो नाराज हो गया और सारे को मार बैठा होगा।
1: लेकिन मुश्ताक तो सारे के अपने मामा का लड़का है, फिर भी ऐसा व्यवहार, छी छी।
0: अरे औरत मर्द का रिश्ता ही ऐसा होता है जहाँ हर रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं तो कोई अपनी पत्नी को इस तरह मारे।
1: सारे कहाँ है?
0: अपने कमरे में रो रही है मेरी बच्ची, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। हाय, अब नहीं भेजूंगी उसे। हाय, जो मेरी बच्ची को मेरे सामने मार सकता है, वो मेरे पीछे उसके साथ कैसा बर्ताव करता होगा। जीते जी मर गई।
1: फाता, तू अपने भाई करीम को तो समझा ही सकती है कि मुश्ताक पर लगाम रखे। अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, ये तो अच्छी बात नहीं।
0: अपने भाई से क्या बात करूं, उसे तो आराम ही है। एक नौकरानी मिल गई है जो सारा काम घर का करती है। नौकरानी की तरह हो गई है मेरी बच्ची वहां जाकर। अब मैं अपनी बच्ची को उस जालिम के साथ नहीं भेजूंगी।
1: लेकिन मुश्ताक मानेगा?
0: मानेगा नहीं तो क्या, अपनी बच्ची को मरने के लिए भेजूंगी नहीं, नहीं।
2: लेकिन औरत का असली घर तो शौहर का घर ही होता है।
1: लेकिन शौहर भी तो ऐसा नहीं होता कि हर बात पर मारे पीटे।
0: अब तुम ही लोग फैसला करो कि मैं अपनी सारे को उस जालिम मुश्ताक के साथ भेजूं या नहीं।
1: मियां बीवी के बीच झगड़ा तो होता ही रहता है, ऐसे में ना भेजना ठीक नहीं। पर पहले तू अपने भाई से बात तो कर ले और मुश्ताक से भी बात कर ले।
0: बात क्या करना, वो तो चाहेंगे ही कि सारे वहां आ जाए। उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
1: अब चलो री, बहुत देर हो गई है।
3: हाँ,
1: चलो चलो चलो चलते हैं।

0: फाता
1: आ गए।
0: फाता, ये औरतें क्या बातें करते हुए जा रही थीं?
1: अरे वही बातें करेंगी ना जो देखा है उन्होंने।
0: आखिर हुआ क्या है?
1: अरे मुश्ताक ने सारे को मेरे सामने जालिमों की तरह मारा।
0: फाता, तू ये क्या कह रही है? मुश्ताक ने सारे को मारा? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
1: अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है मुश्ताक को सारे को मारते हुए।
0: कहीं कुछ गलती हुई है, हमें उनसे बात करनी चाहिए और इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए।
1: मैं ऐसा नहीं कर सकती।
0: अरे इस बात को फैलने से हमारी बदनामी ही होगी।
1: या खुदा, अब बदनामी क्या होगी? सारे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई।
0: ओफो, तुमसे बात करना भी? सारे कहाँ है?
1: अरे रो रो कर बुरा हाल है बेचारी का। जिसका पति इतना निर्दयी हो उसका क्या होगा? हाय रे मेरी बच्ची।
0: अरे फाता, अब तू चुप कर। तू इस बात को क्यों बढ़ा रही है? ये ठीक नहीं है। इससे उनके जीवन में दुख ही बढ़ेगा।
1: तुम चुप करो जी, तुम्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या अच्छा है क्या बुरा है।

0: ये मैं खूब समझती हूँ, सारे मेरी बच्ची है और उसके सुख दुख को तुमसे ज्यादा मैं समझती हूँ।
1: फाता, तू जो कर रही है वो सारे को कभी खुशी नहीं दे सकता। तू इस तरह से शोर मचा कर उनके जीवन में समस्या को ही बढ़ाएगी। अरे हमें दोनों से बात करनी चाहिए जिससे इस बात को यहीं खत्म किया जा सके।
0: मैं ऐसा नहीं कर सकती, जानबूझकर मैं अपनी बच्ची को उस मुश्ताक के साथ अब नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी।
1: फाता, तू बात को बढ़ा रही है, ये ठीक नहीं है। हमें इस बात को सुलझाना है न कि।
0: चुप करो, चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब जो होगा मैं ही करूंगी, तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई जरूरत नहीं है।
1: या अल्लाह,

0: आ रहे, मेरी बच्ची इस तरह क्यों बैठी है?
1: अम्मी अम्मी, ये तूने अच्छा नहीं किया।
0: अरे सारे, तू कह रही है कि मैंने अच्छा नहीं किया? अरे मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया है।
1: अम्मी ये ठीक नहीं हुआ है, ये घर की बात थी अम्मी, मेरे और मुश्ताक के बीच की बात थी, और तुमने तुमने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया।
0: अरे सारे, तू नहीं जानती, ये मर्द ऐसे मुट्ठी में नहीं आते। अब देख मैं कैसे उसे ठीक करती हूँ।
1: अम्मी तू हमें हमारे हाल पर छोड़ दे।
0: तू क्या समझती है मैं तेरी दुश्मन हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भले के लिए कर रही हूँ।
1: अम्मी इससे ना तो मेरा भला हो सकता है और ना ही

0: नहीं कर सकता है।
1: अम्मी बस भी करो, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो।
0: ये सब क्या मुझे अच्छा लग रहा है? मुझे भी दुख है, तू मेरी बेटी है और मेरे सामने तुझे कोई मारे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोल, तू ही बोल, ये अच्छा लग सकता है क्या?
1: मुश्ताक मेरा शौहर है अम्मी, और मैं उससे प्यार करती हूँ। और फिर एक परिवार में ऐसा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मुश्ताक ऐसा नहीं है अम्मी, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है।
0: चुप कर तू, मैंने देख लिया अपनी आंखों से कि मुश्ताक कैसे प्रेम करता है, और अगर उसका प्रेम ऐसा ही है तो तुम्हें उसके पास दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्ताक और मुश्ताक जैसे मर्द औरत को सिर्फ घर की नौकरानी बनाकर रख सकते हैं, मार सकते हैं। और छी
1: अम्मी, तू नाहक परेशान मत हो, इस बात को यही खत्म कर दे, सब ठीक हो जाएगा अम्मी।
0: अब कुछ ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें नौकरानी सा काम करने और मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। देर से ही सही, मुश्ताक का असली चेहरा तो सामने आ ही गया, और उस करीम और फजी की नीयत का भी, जो तुझे महज एक औरत के रूप में नौकरानी समझते रहे हैं और उससे भी बदतर व्यवहार करते रहे हैं। अब देखना, मैं उन्हें बता दूंगी कि फाता की बेटी को दुख देने का मतलब क्या होता है। अगर मैंने उन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम नहीं।
1: अम्मी, अब तू कुछ नहीं करेगी, जो तूने कर दिया वही बहुत है, और उससे जो कुछ भी हुआ उसे मैं कबूल कर लूंगी। अब और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी।
0: अब तू मुझे समझाएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं तेरी दुश्मन हूं बेटी? तेरी माँ हूं मैं, जो कुछ भी करूंगी तेरे भले के लिए ही करूंगी। और मैं उन्हें समझा दूंगी कि औरत पर जुल्म करना इतना आसान नहीं होता। उन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे।
1: अम्मी, तू अब कुछ भी नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तू इतना तूल दे रही है। एक परिवार में ऐसा होता ही रहता है अम्मी, हमें इसे संभालना है, ना कि बिगाड़ना। मैं बात करूंगी मुश्ताक से।
0: अब तू उस जालिम से नहीं मिलेगी
1: अम्मी,
0: और तुझे संभालना होता कब का संभाल चुकी होती, और इतने दिनों में मुश्ताक तेरी मुट्ठी में होता, जैसे खजरी अपने शौहर को अपने इशारों पर रखती है। तुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो मैं करूंगी, और इस बीच में तुम्हें बोलने या कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की पांचवी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे हरीश, लोकेश, सुप्रिया, नीलम और अंशु। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के 134वें संस्करण में कहा कि नीदरलैंड में विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई हैं और यह ऐसा क्षण था जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में आज से कॉलेज चलो अभियान एवं महाविद्यालय में प्रवेश का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अहिल्याबाई का जीवन सुशासन, देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का अनुकरणीय आदर्श है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस महीने की 29 तारीख को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान एप्लीकेशन के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। और आईपीएल क्रिकेट में फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोता बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की।

महिला सभा सुन रही सभी सखियों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में बनाएंगे कुछ ठंडा ठंडा। बहनों, कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे धूम्रपान निषेध दिवस पर। आज 31 मई को पूरा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मना रहा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना कितना आवश्यक है। आज आधुनिकता भरी जीवन शैली में कई लोग तनाव और दिखावे के कारण धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। शुरुआत अक्सर शौक से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत का रूप ले लेती है। यह लत केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बहनों, धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष लाखों लोग इस लत की वजह से असमय मृत्यु का शिकार

शिकार हो जाते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि आज युवा वर्ग तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है। कई बार लोग इसे आधुनिकता और व्यक्तित्व का प्रतीक मान बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि धूम्रपान व्यक्ति की ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य तीनों को कमजोर करता है। सखियों, धूम्रपान का प्रभाव केवल सेवन करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। घर परिवार के सदस्य, छोटे बच्चे और आसपास के लोग भी इस धुएं से प्रभावित होते हैं। इसे हम निष्क्रिय धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इससे बच्चों में सांस संबंधी बीमारियां और महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प की भी है। यदि व्यक्ति मन में ठान ले तो वह इस आदत को छोड़ सकता है। परिवार का सहयोग, सकारात्मक वातावरण, योग, व्यायाम और अच्छी दिनचर्या व्यक्ति को नशे से दूर रखने में सहायक बनते हैं। हम बहनें भी कोशिश करें कि हमारे परिवार में आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो हम भी इस मुहिम में उनका साथ अवश्य निभाएं। सखियों, अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स पर। माता पिता हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर है। वे केवल हमें जन्म ही नहीं देते बल्कि अपने अथक परिश्रम, स्नेह और मार्गदर्शन से हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। एक बच्चे के जीवन की पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और माता पिता उसके प्रथम शिक्षक। वे हमें चलना, बोलना, अच्छे संस्कार अपनाना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को पूरे विश्व में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। यह दिन उन महान आत्माओं को सम्मान देने का अवसर है जिनके प्रेम, त्याग, संघर्ष और संस्कारों से हमारा जीवन संवरता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ममता, करुणा और स्नेह का अथाह सागर होती है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चों को खुश रखने का प्रयास करती है। बच्चे की छोटी सी तकलीफ भी माँ को बेचैन कर देती है। उसकी दुआओं में हमेशा अपने बच्चों का सुख और सफलता ही शामिल होता है। वही पिता परिवार की वह मजबूत नींव होते हैं जो अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे रहते हैं। पिता का प्रेम अक्सर कठोर अनुशासन और जिम्मेदारियों के पीछे छिपा होता है, लेकिन उनका हर संघर्ष अपने परिवार की खुशियों के लिए ही होता है। माता पिता का जीवन त्याग और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। सखियों, आज के समय में व्यस्त दिनचर्या, मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण परिवारों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को समय नहीं दे पाते। वृद्धावस्था में माता पिता को सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के साथ सम्मान और अपनत्व की होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माता पिता जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बहनों, भारतीय संस्कृति में माता पिता को भगवान के समान माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमें हमेशा संकल्पित होना चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें, क्योंकि जीवन में सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता पिता का आशीर्वाद उससे कहीं अधिक मूल्यवान होता है।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

बहनों, अब बात करते हैं 1 जून को मनाए जाने वाले वर्ल्ड मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस की। इस दिवस का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व, स्वास्थ्य लाभ और मानव जीवन में उसके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से लेकर बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती तक दूध हर आयु वर्ग के लिए लाभकारी माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दूध का विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही दूध और दुग्ध उत्पाद हमारे भोजन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हमारे पर्व त्योहारों, पूजा पाठ और पारंपरिक व्यंजनों में भी दूध का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहनों, दूध केवल पोषण का

बच्चों में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। ऐसे में दूध और उससे बने पौष्टिक पदार्थों को दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक हो गया है। दूध शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन उचित मात्रा में दूध का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, दांत स्वस्थ रहते हैं तथा शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। दूध से बने दही, पनीर, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। सखियों, दूध स्वास्थ्य का आधार है। यदि प्रतिदिन संतुलित मात्रा में दूध का सेवन किया जाए तो शरीर स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जावान बना रहता है। इसलिए हमें अपने दैनिक भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थों को अवश्य शामिल करना चाहिए। सखियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बढ़ते तापमान की। ग्रीष्म ऋतु अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लेकर आती है और इस समय तो सबसे ज्यादा गर्म दिन 9 तपा चल रहे हैं। इस मौसम में यदि सावधानी न रखी जाए तो शरीर में पानी की कमी, थकान, लू लगना और कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का रस शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। अधिक देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए और हल्का, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और आम जैसे मौसमी फल शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो इनका सेवन भी हमको करते रहना चाहिए। गर्मी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बासी भोजन और खुले में रखी खाद्य सामग्री से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। घर और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने से बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। उन्हें समय समय पर पानी पिलाना चाहिए और अत्यधिक गर्म वातावरण से बचाना चाहिए। नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। यदि हम थोड़ी सावधानी और सही दिनचर्या अपनाएं तो ग्रीष्म ऋतु का आनंद लेते हुए स्वयं को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। सखियों, ये बात तो हुई गर्मी के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें, और अब चलते हैं उन 7 बातों की तरफ, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें यानी 7 वचन की तरफ। कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से राष्ट्रहित में 7 महत्वपूर्ण बातें कही। यह बातें उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों, बढ़ते तेल दाम, विदेशी मुद्रा बचाने और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के संदर्भ में की थी। सर्वप्रथम, 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना आयात करने वाले देशों में है। सोना विदेशों से डॉलर देकर खरीदा जाता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। इसलिए हम लोगों को 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदना। दूसरी बात, विदेश यात्रा ना करें। विदेश यात्रा में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अभी आपको पर्यटन पर जाना है तो भारत में कई ऐसी सुंदर सुंदर जगह है, आप वहाँ जा सकती है। पेट्रोल डीजल की बचत करें। भारत कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की बचत करें। इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। कहीं जाना है तो एक दूसरे के साथ एक गाड़ी पर जाएं। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाएं। विदेशी वस्तुओं की जगह भारत में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे। स्वास्थ्य और आयात दोनों कारणों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने की सलाह दी गई है। प्राकृतिक खेती और ईवी को बढ़ावा दें। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, प्राकृतिक खेती अपनाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात कही गई। कोविड काल की तरह जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स अपनाने की बात कही गई, ताकि ईंधन की बचत हो सके। देशवासी इन 7 बातों यानी इन 7 वचनों का पालन करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रह सकते हैं। तो हम सबको भी कोशिश करनी है कि हम इन 7 वचनों का पालन करें।

सखियों, गर्मी की तपती दोपहर में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए तो कितनी राहत महसूस होती है। आज खाना खजाना में हम लाए हैं आपके लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाने की विधि। वैसे तो यह हमारे दादी नानी के समय से बनता चला आ रहा है, पर इस समय यह काफी ट्रेंड में है। तो चलिए नोट कीजिए गोंद कतीरा शरबत में लगने वाली सामग्री। हमें चाहिए गोंद कतीरा 2 छोटे चम्मच, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी या मिश्री स्वाद

0: अनुसार गुलाब का शरबत एक बड़ा चम्मच, बर्फ के टुकड़े, इलायची पाउडर थोड़ा सा। शरबत बनाने के लिए रात भर गोंद कतीरा को पानी में भिगो दें। सुबह तक यह फूलकर जेली जैसा हो जाएगा। अब एक गिलास ठंडा दूध लें, उसमें चीनी या मिश्री मिला लें। भीगा हुआ गोंद कतीरा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें गुलाब शरबत, इलायची पाउडर और साथ ही बर्फ के टुकड़े डाल दें। लीजिए, ठंडा ठंडा गोंद कतीरा शरबत बनकर तैयार है। बहनों, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू और गर्मी से बचाता है, पेट की जलन कम करता है। सखियों, गर्मी की दोपहर ज्यादा बड़ी होती है। इस समय दोपहर का भोजन करने के बाद 3 से 4 बजे तक हल्की भूख लगने लगती है, तो उसके लिए कुछ ठंडा चटपटा खाने का मन करता है। आज हम आपके लिए लाए हैं चटपटे मूंग दाल के पानी पड़े। इनको बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल धुली वाली 1 कप, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, हींग चाहिए आधा छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार और साथ ही चाहिए थोड़ा तेल पकौड़े तलने के लिए। और चटपटे पानी के लिए हमें चाहिए पानी 1 लीटर ठंडा, पुदीने के पत्ते बारीक कटे हुए, हरा धनिया थोड़ा सा, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच, भुना जीरा पाउडर और साथ ही चाहिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और सादा नमक। सबसे पहले मूंग दाल बड़ों को बनाने के लिए जो दाल हमने ली है, आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें। अब उसको धो लें अच्छे से, उसका पानी निकाल दें और मिक्सर में इसको पीस लें। इसका हमें बारीक पेस्ट तैयार नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। अब इसमें आप हींग, हरी मिर्च और नमक मिला लें और अब इस घोल को 2 मिनट अच्छे से फेंट लें ताकि यह हल्का और फूला हुआ हो जाए। अब कढ़ाई में तेल गर्म करें और छोटे छोटे पकौड़े सुनहरे होने तक सेक लें। अब इसका पानी तैयार कर लें। एक बर्तन में ठंडा पानी लें, इसमें नमक, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और बाकी सब मसाले मिला लें। अब इस पानी में जो हमने बड़े सेके थे उनको डाल दें। इनको 15 से 20 मिनट आप इस पानी में भिगो कर रखें। अब यह सर्व करने के लिए तैयार है। तो इस गर्मी आप भी यह ठंडे चटपटे मूंग दाल के बड़े बनाइए और खाइए। सखियों, गर्मी में अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अब अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोता बहने अभी सुन रही थी उनका अपना कार्यक्रम महिला सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है सुगम लोक संगीत। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु गीत से।

यादव और साथियों के गाए इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार है संगीता राय।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने संगीता राय के गाए गीत और भजन सुने। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
3: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज है। भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और सलिल चौधरी के संगीत से सजे गीत से। आवाज तलत महमूद की है और फिल्म है छाया।

0: फिल्म गंगा जमुना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में शेख महजबी अलमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए नीदरलैंड सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह में हैं। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। तेज आंधी के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। रात करीब 12:30 बजे से सुबह 3 बजे तक भोपाल में तेज हवाएं चलती रहीं। कई क्षेत्रों में बिजली गुल होने की शिकायतें सामने आईं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले घंटों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। मौसम विभाग ने आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां आयोजित रोड शो में सहभागिता की। रायसेन जिले के ग्राम सेमरी की अंजना यादव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मादा चीता निरवा और उसके 3 शावकों को कल उनके बाड़े से निकालकर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया है। इससे अब यहां चीतों की संख्या 20 हो गई है। इनकी रेडियो टेलीमेट्री सिस्टम से लगातार निगरानी की जा रही है। राज्य शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की आज आगरमालवा में बैठक हुई। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया क्षेत्र में पुरुषोत्तम मास के 15 दिन पूरे होने के अवसर पर आज सांडिया स्थित नर्मदा तट पर धार्मिक मेले का आयोजन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिम्स

0: सागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
2: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
1: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
1: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
1: नेवी, एयरफोर्स,
2: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
1: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
0: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोइबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे।

0: आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। नन्हे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की।

0: नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आपकी दोस्त विभूति। आज के हमारे कार्यक्रम में हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी, एक मजेदार पहेली, देंगे आपको एक छोटा सा मैसेज और मिलेंगे अपने दो खास मेहमान बच्चों से भी। अंत में सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। तो चलिए शुरू करते हैं मुस्कान, प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ। बच्चों अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी।
1: बच्चों आज हम सुनाएंगे कहानी आलस बुरी बला है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको आलसी बनने से रोकेगी। एक गांव में रहता था किशोर, एक बहुत आलसी लड़का। वो भैंसे चराने जाता लेकिन सो जाता, जब दूध बेचने जाता तो खूब बहाने बनाता और सबसे कहता, भाग्य में जो होगा सो होगा, यही उसका मंत्र था। एक दिन उसके द्वार पर आए एक साधु और साधु उससे बोले, बेटा मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूं, ये पत्थर लोहे को सोना बना देगा, मैं 8 दिन बाद वापस आऊंगा। किशोर खुशी से बोला, महाराज बहुत धन्यवाद। अगले दिन किशोर ने सोचा, मैं कल लोहा खरीद लूंगा और सो गया। दूसरे दिन पत्नी ने उसे उठाया तो वो थोड़ा सा लोहा लेकर आया जो सोना बन गया। वो उस सोने को बाजार में बेच आया लेकिन बोला, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, और फिर से सो गया। ऐसे करते करते तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवां, छठवां, सातवां दिन भी बीत गया। किशोर सोते रहा। आखिरी दिन साधु आए और क्रोधित होकर बोले, पारस वापस करो। किशोर घबराते हुए बोला, महाराज अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, थोड़ा सा समय और। साधु ने गुस्से में कहा, तू आलस का गुलाम है, तेरे जैसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। किशोर पछता कर रह गया। साधु पारस लेकर वापस चले गए। अब देर हो चुकी थी, आलस ने किशोर के सारे सपने चुरा लिए थे। तो बच्चों आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।
0: बच्चों इस कहानी में कितनी प्यारी सी सीख है कि छोटे काम भी बहुत बड़ा असर करते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मजेदार पहेली कोने की तरफ, जहां पर आज हम आपको सुनाएंगे एक पहेली जिसका आंसर देना होगा आपको। पहेली ये है कि मैं बिना पांव के चल सकता हूँ, बिना मुंह के बोल सकता हूँ और बिना हाथ के चीजें हिला सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे छू नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूँ? आंसर समझ में आया? कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर सोचिए और मैं देती हूँ एक छोटी सी हिंट। हिंट ये है कि जब मैं तेज होता हूँ तो पेड़ हिलते हैं और जब मैं धीमा होता हूँ तो पत्तियां शांत रहती हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जवाब है हवा या हवा का झोंका। हवा बिना पांव के चलती है, बिना मुंह के लगता है कि बोल रही है और पेड़ों को हिला देती है। अब सच बताइए, आपको उत्तर समझ में आया था या आपने सोचा था कुछ और? अब हम पढ़ते हैं हमारे संदेश की ओर। एक छोटी सी काइंडनेस। आप हर रोज कोशिश कीजिए कि किसी का काम थोड़ा सा आसान कर दें, किसी छोटे को अपने खेल में शामिल कर लें या घर में किसी बड़े की मदद कर दें। रास्ते में गिरे हुए केले के छिलके को उठा दे, जिससे सफाई भी होगी और वो किसी को फिसलने से गिरने से भी बचाएगा। ऐसी दया या काइंडनेस से आपका दिल बड़ा होता है और आपके होठों पर खिलती है मुस्कान। अब वक्त है हमारे मेहमानों से मिलने का। आज हम जहाँ हैं वहाँ हमारे आसपास नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो खेल रहे हैं।

0: हैं और कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलो इन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियों में क्या क्या कर रहे हैं। हेलो बेटा।
1: हेलो।
0: आपका नाम क्या है?
1: स्वरा।
0: स्वरा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
1: फोर्थ।
0: तो अभी आपके समर वैकेशंस चल रहे होंगे?
1: यस।
0: छुट्टियों में के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
1: मुझे छुट्टियों के बारे में एक मैं डांस क्लास जाती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसमें मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं और मैं उनके साथ खेल भी पाती हूँ। उस गली में कोई रहता ही नहीं है।
0: अच्छा, जहाँ आप रहते हो वहाँ कोई नहीं रहता है ना, और जो फ्रेंड्स मिलते हैं डांस क्लासेस में वो बहुत अच्छा लगा। तो सिर्फ डांस सीखते हो कि और भी मस्ती करते हो?
1: हम डांस भी सीखती हूँ मैं। मम्मा ने कुछ क्लासेस की बात करी है पर वो इतने सारे चार्जेस ले लें अवेकस के लिए, ड्राइंग के लिए, तो मम्मा ना अब हमें
0: एक क्लास ज्वाइन कराई है।
1: हाँ,
0: क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। थोड़े कम चार्ज लेना चाहिए ना उनको, जिससे बच्चे ढेर सारा सीख सके।
1: हाँ।
0: तो अभी कितने गानों पे डांस सीखा है आपने?
1: अभी तो मैंने टोटल 5 सॉन्ग्स पे डांस सीखा है।
0: हमें करके दिखाना आप, जब हम बात कर ले उसके बाद मैं डांस दिखाओगे?
1: हाँ।
0: सिर्फ डांस पसंद है, गाना गाना भी पसंद है आपको?
1: थोड़ा थोड़ा पसंद है गाना गाना, वैसे तो डांस करना ही पसंद है।
0: ज्यादा डांस करना पसंद है। और सबसे अच्छा कौन डांस करता है आपकी क्लास में?
1: सबसे अच्छा दीदी करती हैं।
0: सिखाने वाली?
1: वो वाली जो आती है क्लास में
0: आपके साथ सीखती है वो? तो क्या नाम है उन दीदी का?
1: उन दीदी का नाम है आराध्या।
0: आराध्या। और सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है आपकी इस डांस क्लास में?
1: सबसे अच्छी फ्रेंड अद्विका है।
0: वो भी डांस सीखती है कि वो कुछ और भी सीखती है?
1: वो डांस भी करती है और आर्ट क्लास भी जाती है।
0: अच्छा, छुट्टियों में सिर्फ ये हॉबी क्लासेस कर रहे हो, कुछ पढ़ाई हो रही है घर पे?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कितनी?
1: थोड़ी सी। इसको पढ़ा देती हूँ मैं अपने भाई को।
0: अच्छा, तो बस उसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है?
1: हाँ।
0: वेरी स्मार्ट। अच्छा, और भी कुछ घर पे कर रहे हो?
1: मैं घर पे स्केचिंग करती हूँ और ड्राइंग करती हूँ खुद से।
0: क्या बनाया आपने कल स्केच?
1: कल मैंने स्ट्रॉबेरी का स्केच बनाया।
0: स्ट्रॉबेरी का? स्ट्रॉबेरी बहुत तो फायदेमंद है। आपको पसंद है खाने में स्ट्रॉबेरी?
1: थोड़ी थोड़ी।
0: कौन सा फ्रूट पसंद है खाने में?
1: मुझे बनाना।
0: बनाना बहुत पसंद है। अच्छा, तो बनाना शेक भी पीते हो या कैसे खाते हो?
1: सिंपल जैसे सब लोग खाते हैं,
0: उसको छिलका उतार के।
1: हाँ।
0: और केले का छिलका कहीं यहाँ वहाँ गिरा दिया है तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ये पता है आपको?
1: हाँ पता है।
0: किसी को गिराने की कोशिश तो नहीं करी?
1: नहीं।
0: तो छिलका कहाँ डालते हैं?
1: छिलका डस्टबिन में डालते हैं।
0: वेरी गुड। अच्छा, डांस क्लास का टाइम क्या? आज तो इतनी गर्मी भी हो रही है, तो कितने बजे जाते हो?
1: मेरा 8 बजे का बैच है।
0: मॉर्निंग?
1: मॉर्निंग।
0: और कितनी देर तक सीखते हैं?
1: मैं 10 बजे तक।
0: 10 बजे तक सीखते हो। तो कौन से गाने पे डांस करना सबसे ज्यादा पसंद है आपको, जरा गा के बताओ? मैं
1: घर मोरे परदेसिया।
0: थोड़ा गाना आता है? थोड़ा सा
1: नहीं।
0: कोई पोयम आती है? मेरी फेवरेट पोयम हमें सुना दो जो बच्चे सुन रहे हैं।
1: कौन सी?
0: जो भी आपको पसंद हो। हिंदी की कोई कविता सुना दो।
1: हिंदी की क्या सुनाऊं?
0: हिंदी की कविता याद नहीं है?
1: नहीं है।
0: इंग्लिश की याद है?
1: इंग्लिश की मुझे मेरे दिमाग में ही नहीं आ रही।
0: तो कोई गाना ही सुना दो फिर।
1: गाना साहिबा साहिबा नींदे मींदे आए ना राती काटी जाए वह तेरे ही ख्याल।
0: अच्छा, तो आप नहीं गाना नहीं गा पा रहे हो, कोई जोक कोई कहानी कोई शायरी कुछ याद आ रही है तो सुना दो
1: मुझे ना। रातों रात मिटा दूंगी बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान।
0: ये आपने फिल्म में सुना है?
1: नहीं, यूट्यूब पे।
0: कोई बच्ची बोल रही थी आपके जैसी?
1: नहीं, बड़े लोग।
0: अच्छा, तो आपको ये अच्छा लगा?
1: ठीक ठीक लगा, ज्यादा अच्छा नहीं।
0: ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो कुछ ऐसा सुनाओ जो अच्छा लगा।
1: यही अच्छा लगा।
0: अच्छा अच्छा, अब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको?
1: स्कूल में फ्रेंड्स मिलते हैं और जब मैं स्कूल जाऊंगी उस दिन गेम्स का पीरियड है तो मजा भी आएगा।
0: कौन सा गेम खेलती हो?
1: हम अभी के लिए तो बैडमिंटन और यही गेम्स खेलते हैं, डोज बॉल।
0: अच्छा, घर में आप थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करते हो, जैसे मम्मा हैं या पेरेंट्स हैं आपके?
1: हाँ।
0: क्या काम करते हो?
1: मैं बोटल्स में पानी भर के रखती हूँ ठंडा होने के लिए। उनके कपड़े को घड़ी करके रखती हूँ और कभी कभी सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत।
0: सफाई तो बिल्कुल करनी चाहिए, सफाई बहुत अच्छी चीज़ है ना। और ये जो भैया है आपका, ये गंदी करता है या सफाई करता है?
1: मेरे साथ कभी थोड़ी थोड़ी सफाई भी कर लेता है और कभी गंदी की भी करता है।
0: फिर आप कान खींचते हो इसके?
1: कान कभी कभी
0: इससे ही बातें करते हैं ना।
1: चलो,
0: क्या नाम है आपका?
2: अयांश।
0: और अभी सब फ्रेंड्स को हेलो बोलिए जो आपको सुन रहे हैं, बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: हेलो फ्रेंड्स।
0: अयांश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
2: एलकेजी
0: में पढ़ते हो। केजी में आपने कुछ सीखा है, पोयम सीखी है कोई?
2: हाँ।
0: सीखी है?
2: हाँ।
0: सुनाइए।
2: 1, 2, 3
0: सीखा है?
2: हाँ।
0: सुनाओ।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
0: थोड़ा जोर से बोलिए।
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
0: 8 भी आता है बीच में।
3: अच्छा,
0: ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम आती है?
2: नहीं।
0: जॉनी जॉनी वाली
2: आती है?
0: सुनाइए अपने फ्रेंड्स को, अभी आपने हेलो बोला ना, अब वो सोच रहे होंगे आयांश कुछ सुनाएगा हमें।
2: जॉनी जॉनी, यस पापा, शुक्र नए नए पापा।
0: जॉनी जॉनी यस पापा आता है बस? हाँ।
2: हाँ।
0: चलो ठीक है, काफी है इतना। और आपको काउंटिंग भी आती है ना, 1, 2, 10?
2: हाँ।
0: 10 के आगे नहीं आती। तो आयांश, आपको छुट्टियों के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: आती है काउंटिंग।
0: आती है?
2: हाँ।
0: 10 के आगे आती है?
2: हाँ।
0: सुनो।
2: 11,
0: वेरी गुड।
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
0: यार आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा, आप पोयम भी याद आई क्या कोई सी? जॉनी जॉनी पूरी याद आई?
2: हाँ।
0: सुनाओ।
2: अभी तो सुनाई,
0: अभी एक ही लाइन सुनाई थी, पूरी पूरी मैं बोल रही हूँ, पूरी याद आई?
2: हाँ।
0: सुनाओ सुनाओ।
2: जॉनी जॉनी ऐसे पापा शोल्डर रहे थे नहीं बाप।
0: अच्छा, और अपने हाथों से ये आप हार्ट का शेप बना रहे हो?
2: नहीं।
0: अच्छा, आप जो आपके फ्रेंड्स सुन रहे हैं उनसे कुछ और भी बात बोलनी है आपको?
2: नहीं,
0: कुछ नहीं बोलना।
2: नहीं।
0: अच्छा, छुट्टियों में क्या करते हो ये तो बताओ हमें।
2: छुट्टियों में रुक जाता हूँ घर पे।
0: और घर पे रुक के क्या होता है?
2: नॉर्मल कपड़े पहनता हूँ।
0: और आप स्पेशल कपड़े कब पहनते हो?
2: फैशन कपड़े बाजार के लिए होता है।
0: बाजार के लिए स्पेशल कपड़े पहनते हो? तो वो कपड़े कहाँ रखे जाते हैं?
2: ड्रेसिंग रूम में।
0: ड्रेसिंग रूम में। और जो नॉर्मल कपड़े हैं वो कहाँ होते हैं?
2: वो भी ड्रेसिंग रूम में होते हैं।
0: अच्छा, लेकिन आपने जो पहना है हमें तो ये काफी स्पेशल लग रहा है। ये भी, ये किसने बनाया आपको?
2: ए, मामा ने। आपके पास में टिश्यू पेपर है ना?
0: टिश्यू पेपर है? हाँ। टिश्यू पेपर किस लिए काम आता है?
2: पोंछने के लिए।
0: क्या पोंछने के लिए?
2: खाना।
0: खाना पोंछने के लिए, वेरी गुड। और भी पसीना भी पोंछ सकते हैं?
2: पसीना नहीं मार सकते हैं, पसीना तो पाउडर से, नहीं तो ऑयल से।
0: ऑयल से पोंछते हैं पसीना?
2: नहीं तो पाउडर से।
0: और पाउडर से पोंछते हैं? ये तो यार आपने बड़ी अच्छी बात बताई है, मुझे पता नहीं था। ऑयल से कैसे पोंछते हैं पसीना?
2: और बस बस
0: बस।
2: हाँ।
0: बस।
2: हाँ।
0: बस की ट्रेन?
2: बस
0: बस। हाँ, अपनी भी बस। चलो,
2: क्या बोलूं?
0: कोई गाना सुनाओगे?
2: नहीं।
0: कोई बात करनी है फ्रेंड से?
2: हेलो।
0: अच्छा, बाय बोलो, बाय बोलने का टाइम आ गया।
2: बाय, सी यू।
3: बाय फ्रेंड।
2: बाय फ्रेंड।
0: तो बच्चों, ये थे ये बहुत प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे। बच्चों, इन प्यारे दोस्तों से मिलने के बाद अब समय है हमारे गीत का। चलिए तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। आप भी कोशिश कीजिएगा संग संग।

और इसी गीत के साथ अब वक्त है आपसे बाय बोलने का। जी हाँ, अब हमें ये प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपका बहुत सारा धन्यवाद ये प्रोग्राम सुनने के लिए, और ये था आज का मुस्कान। मिलेंगे आपसे ऐसी ही प्यारी प्यारी बातों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, और आपके चेहरे पर हमेशा हमेशा खिली रहे मुस्कान। नमस्कार।

जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार के भिन्न भिन्न विभागों ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उनका पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं। इससे तमिल समुदाय विशेष उत्साहित है। ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने यहां शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कॉलेज चलो अभियान एवं प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया और रोड शो में सहभागिता भी की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। श्री स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण, मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरीय निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 1923 ग्रामों में संपादित किया गया है। और राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। युवा श्रोता युववाणी कार्यक्रम शाम 5:02 पर सुनेंगे, जो आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 6 बजे से। 7:21 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें गीत संगीत और चर्चा के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:30 से। विषय रहेगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन और समसामयिक कार्य। इस विषय पर आप सीधे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 2660902 और 2660903। विशेषज्ञ होंगे प्रवीण कुमार जगा। रात 8 बजे का समय सुर्खियों में कार्यक्रम के लिए होगा। डकर विकास के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री ई विद्या योजना पर केंद्रित कार्यक्रम, जो आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति रहेगी। रात 10 बजे से सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे सांध्यकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है लोक संगीत। कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी।

0: मीडियम 188.3 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। यह संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 181 करोड़ लाख रूपये की राशि के सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर अकोदिया सुंदर

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचे पर चर्चा करने का। साथियों आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। अब लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तथा खरीदारी भी कर सकते हैं। इन सभी सुविधाओं में नेट बैंकिंग का विशेष महत्व है। नेट बैंकिंग के माध्यम से बैंक से जुड़े अधिकांश कार्य बिना बैंक जाए आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी अर्थात ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नेट बैंकिंग का उपयोग करते समय सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है। साथियों नेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। लोग किसी भी समय अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं और विभिन्न प्रकार के भुगतान कर सकते हैं। परंतु यदि उपयोगकर्ता थोड़ी भी लापरवाही करता है तो साइबर अपराधी उसका बैंक खाता खाली कर लेते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग कई तरीकों का उपयोग करते हैं। वे नकली कॉल, फर्जी वेबसाइट, ईमेल, मैसेज या मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को धोखा देते हैं। साथियों कुछ लोग लालच देकर लिंक भेजते हैं और उस लिंक पर क्लिक करते ही व्यक्ति की सारी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नेट बैंकिंग का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड रखना चाहिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल हो। जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या सरल शब्दों को पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। साथियों समय समय पर पासवर्ड बदलते भी रहना चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल में स्क्रीन लॉक और बैंकिंग ऐप में सुरक्षा सुविधाएं चालू रखनी चाहिए। साथियों सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई का उपयोग करके नेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते। साइबर अपराधी इन नेटवर्क के माध्यम से आपकी जानकारी चुरा सकते हैं। हमेशा अपने निजी और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग कार्य समाप्त होने के बाद खाते से लॉग आउट करना अवश्य चाहिए। साथियों आजकल ओटीपी फ्रॉड बहुत सामान्य हो गया है। बैंक हमेशा ग्राहकों को चेतावनी देते हैं कि ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। ओटीपी, एटीएम पिन और पासवर्ड पूरी तरह गोपनीय होते हैं। यदि किसी व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर भी इन्हें पूछे तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऐसे फोन कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं करते। साथियों यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए और साइबर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समय पर कार्रवाई करने से नुकसान कम हो सकता है। साथियों सरकार और बैंक भी लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं। दोस्तों नेट बैंकिंग आधुनिक जीवन की एक उपयोगी सुविधा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता हमें बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 बातों का रखे खास ख्याल पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की जनता से 7 प्रमुख अपील की गई जिनको मानना हमारा दायित्व है। दोस्तों उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत हो सके। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को कहा, इसके लिए आप निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग करें। दोस्तों सोने की खरीदारी ना करें, देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखने के लिए ऐसा करें। सोना विदेशों से मंगाया जाता है जिसे आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा खर्च होगी, इसलिए अपील की गई है सोना नहीं खरीदें। दोस्तों उन्होंने कहा विदेशी यात्राएं ना करें, अगले एक वर्ष तक इससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। साथियों स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को अपनाने को उन्होंने कहा है। दोस्तों खाने की तेल की खपत घटाएं, क्योंकि तेल का ज्यादा उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। साथ ही विदेशों से तेल मंगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है। प्राकृतिक खेती अपनाएं, कृषि क्षेत्र में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती और जैविक खाद की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों इन सभी बातों का हम सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी विदेशी मुद्रा की बचत करनी है। दोस्तों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का, आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय माता पिता का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार पर चर्चा करने का। साथियों, भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक मानी जाती है।

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ परिवार, संस्कार और रिश्तों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में माता पिता को भगवान के समान सम्मान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का संदेश हमें यही सिखाता है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों, वास्तव में माता पिता का सम्मान ही हमारी संस्कृति का आधार है। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वे हमें जन्म देने के साथ साथ जीवन जीने की सही शिक्षा भी प्रदान करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक वे हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी खुशी के लिए वे अनेक कठिनाइयों और त्यागों का सामना करते हैं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा करके आदर्श प्रस्तुत किया है। साथियों, आज के आधुनिक युग में भौतिकवाद और व्यस्त जीवन शैली के कारण कई लोग अपने माता पिता को पर्याप्त समय नहीं दे पाते, लेकिन हमें हमारे माता पिता का ध्यान रखना चाहिए और अपने व्यस्ततम जीवन में समय निकालकर कुछ समय उनके साथ बिताना चाहिए। यह हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों के लिए बहुत आवश्यक है। साथियों, माता पिता ने जिस प्रेम और समर्पण से हमारा लालन पोषण किया है, उसी भाव के साथ हमें भी उनके साथ रहना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, माता पिता का सम्मान करने से परिवार में प्रेम, शांति और एकता बनी रहती है। जिन परिवारों में बड़ों का आदर किया जाता है, वहाँ बच्चों में भी अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। दोस्तों, माता पिता का सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। हमें उनके विचारों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, कठिन समय में उनका साथ देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सच्चे सम्मान का वे प्रतीक हैं। हमें कभी भी उनसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और यही हमारी सभ्यता की पहचान भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए अब आपके दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम युवाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना
5: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
8: दादी कौन सा प्लांट है?
9: टेंजरीन बहुत मीठा होता है तोड़ना नहीं है।
10: फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक अभी करता हूँ।
8: दादी रुको लिंक में क्लिक मत करना।
10: क्यों?
8: ये SMS स्कैम है क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
10: ओह थैंक्स गप्पू बचा लिया। ये देख तेरी समझदारी का फल।
11: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

ये गीत अभी आपने सुना फिल्म राजकुमार से, जिसके लिए आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरू और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने आपकी कसम इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था आर डी बर्मन का।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया अच्छा।
1: अच्छा,

इस गीत के लिए आवाजें थीं किशोर कुमार की, और गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म थी मनचली।

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश होलकर को उनकी मेधा, करुणा और लोक कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद करता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल पूरा हो गया है। जनगणना के द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्र की जाएगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत।

जब जब फूल खिले इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

0: खामोशी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसकी लिए आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे गुलजार और संगीत था हेमंत कुमार का।
1: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने प्रेम पुजारी इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे नीरज और संगीत था एस डी बर्मन का।

तीन देवियाँ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीतकार थे मजरू, संगीत था एस डी बर्मन का और आवाज़ें थीं लता मंगेशकर किशोर कुमार की। इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

इस गीत को लिखा था जानिसार अख्तर ने, संगीत था जयदेव का और फिल्म थी प्रेम पर्वत, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

छोटी सी बात इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर की। गीतकार थे योगेश और संगीत था सलिल चौधरी का।

Download the Sing Dust now and then.

दर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी किशोर कुमार, आशा भोसले की, गीतकार थे नक्श लायलपुरी और संगीत था खयाम का।

ये गीत था फिल्म त्रिशूल से, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार थे साहिर, संगीत था खयाम का। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
2: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी

0: कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेहड़ी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार के मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेहड़ी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत मतदाताओं की पहचान कल से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। और गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले बता दें आपको इस सभा के बाकी कार्यक्रमों की जानकारी। रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर डगर विकास की ये कार्यक्रम होगा जिसपे आज का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम अनुगूंज जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित करेंगे। रात 10 बजे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा जिसमें आज आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिकी कार्य। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार जगा। और अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह की सभा में 7:20 पर सुनिए दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा जो फिल्म संगीत पर आधारित होगा। रात कल सुबह 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्थानीय रविंद्र भवन के गौरांजनी सभागार में आयोजित संगीत सभा कार्यक्रम में बुंदेली लोक गायन के संपादित अंश। कलाकार होंगे पुष्पलता शर्मा और साथी।

उर्दू कार्यक्रम आई में आप सुनेंगे कल सुबह 9:30 पर जिले की चिट्ठी, कल सुबह 10:00, 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रागमाला। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल अहिर भैरव में वायलिन वादन। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। और 12:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक सिसकियां की छठवीं कड़ी। दोपहर 1:00 सुनिए स्वास्थ्य दर्पण, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। एक बजकर 30 मिनट पर सुनिए लोक संगीत, 1:45 पर होगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 2:00 और 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा में 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युवाणी, ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत होगा। 5:30 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 6:00 कल आप सुनेंगे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:40 पर होगा कार्यक्रम आजकल। 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार दर्शन और कल रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। नौ बजकर 30 मिनट पर सुनिए पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कल रात 10:00 सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित राजेंद्र व्यास का ताल बागेश्वरी में वायलिन वादन। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकते हैं कल शाम की सभा में 7:21 पर। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: रुक जा, पश्मीना उठ से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, कटे फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पहला पार्टी देगा।
1: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल बन जाओ।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सांदीपनि विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के

0: दौरान वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स की अपनी हाल ही की यात्रा का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा,
1: नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। गोवा के सेवानिवृत्त शिक्षक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जिन्होंने मध्य टोलाब क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए काम करना शुरू किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों का समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र हेल्पलाइन नंबर है 89587573335 और 82183263866 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान की गणना का फील्ड कार्य कल 30 मई को पूर्ण कर लिया गया है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल माध्यमों से संचालित की गई। राज्य में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 55 जिले, 425 नगरी निकाय और 449 तहसीलों के अंतर्गत 54,923 ग्रामों में संपादित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान के तहत 1,37,000 से भी अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉकों में 1,44,000 से अधिक प्रकरणों को द्वारा कार्य संपादित किया गया। जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य फरवरी 2027 में संपादित किया जाएगा। इस चरण में परिवार के सदस्यों से निर्धारित जानकारी एकत्रित की जाएगी।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय का भूमि पूजन किया। उन्होंने 121 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि के मां शारदा सांदीपनी विद्यालय शुजालपुर, महाराणा प्रताप सांदीपनी विद्यालय अकोदिया, मिहिर भोज सांदीपनी विद्यालय सुंदर सिंह और राजा भोज सांदीपनी विद्यालय पोचानेर के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार कृषि, किसान और गांव की समृद्धि के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
3: उत्पादन

कृष्ण स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी और लू की बजाय आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है। आज सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आज देवास, सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, छतरपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई से 3 जून तक प्रदेश में आंधी, बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। जबलपुर, सतना और खंडवा में जन जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज वायुसेना के विमान से दिल्ली से मंगोलिया भेजा गया है। ऐसा भारतीय वायुसेना के मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया गया है। कृषि महाविद्यालय खंडवा में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नीमच में जिला पोषण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया कि अति गंभीर कुपोषित बच्चों के श्रेणी सुधार में जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। शिवपुरी में 7 दिवसीय कृत्रिम अंग निर्माण और वितरण का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहर के संरक्षण के लिए प्रयासरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुजालपुर में 121 करोड़ से बने सातवें विद्यालयों का किया लोकार्पण। प्रदेश के रायसेन में कल से खेत बचाओ अभियान। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ। और प्रदेश में आज 8 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम चौपाल के सबै सुनैयन का राधा बहनी के राम राम भैया बहनी मनई सबै को जान लाग है कि ए शायद नौतपा लाग है पै देखी आज पानी बरसा मौसम मा नमी आएगा जबकि एहमेर के मौसम न हो के चाहिए देखी नौतपा जितना तपत है उतनी निकही बरखा होती बे नौतपा में तपे से माटी मच्छी पे फंगस और नुकसान करे वाले कीट पतिंगा साथ है चूहा घाल नष्ट हो जात हमा पै मनई का करी जौन बोए हैं उहा है न काटे का परी पर्यावरण प्रदूषण से मौसम मा उतार चढ़ाव बराबर बना हवा ये देखे का मिल रहा है देखे जौन तदयु महाराज के हाथे है वही तो मनई बदल नहीं सके पै जौन अपने हाथे है ओहमा ध्यान दे बहुत जरूरी है हमारे पड़ोस वाले काका खूब तमाखू खात रहे अहिमक के तमाखू खात रहे अब उनके मुँह में दिक्कत हो लाग यहाँ वहाँ दवाई करावत बागत हमा मनई जब पहले बरजत रहा ता कहा बतान माने का तैयार नहीं भे काका उहा ऐसा हाल होएगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत हाँ भैया बहनी तमाखू स्वास्थ्य के नीता बहुत हानिकारक होती दुनिया भर में 31 मई माने आज के दिना विश्व

तंबाकू निषेध दिवस मनावा जात है। एकर उद्देश्य यह आए कि तंबाकू के सेवन से ओके सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव कैती ध्यान आकर्षित की जाए, जो उनकी वर्तमान में पूर्व विश्व में हर बरिस लगभग 70 लाख से अधिक लोगन के मौत के कारण बनत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्य 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस बनाइन थे। हाँ भैया बहनी, पहले के हिसाब से लोग अब तंबाकू के सेवन वैसा बहुत कम कर दिन ही। पुरनिया सुधकरी जब कोहू के घरे सयान बागे जात रहे नाश्ता पत्ती के बाद जो वो चून तंबाकू न खबाइस तो यह माना जात रहा कि कौनो व्यवहार नहीं आए उनके घरे में। हमका सुधिया भाई, हमार बाबा हरे गली चलत मनई का गोहरा लेत रहे कि ये फलाने अब चून तंबाकू खाए जा। एकर मतलब यह रहा कि घंटा पहार दर दरबार हो जात रही। देखी यह कितना नुकसानदायक रहा। अब बहिनों जे खात हमा भैया बहनी हरे त हमार यह कहब है कि अपना पंचे तंबाकू के सेवन बिल्कुल से बंद कर दे। डॉक्टर वैद्य के लगे देखी मनई जो दर दवाई करावे जात है तो डॉक्टर सबसे पहल सवाल यह करत हाँ कि तंबाकू के सेवन करी थे कि नहीं करी था हन। अगर करत हुई तब बंद कर दे। मनई देखी अपने जीवन के साथे कितना खिलवाड़ कर रहा है। देखी एक जगह दुठे मनई जब बैठ रहा था तो तंबाकू खाए वाला व्यक्ति तंबाकू का गदिया में रगड़त है मलत है ओका फिर वहीं थे वही ठोंकत है। ओसे सामने वाले के नाक में तंबाकू के झार पहुंचे में सेकंडो नहीं ला गए। आओ खाए वाले से ज्यादा ओकर महक ले वाले का नुकसान पहुंचा था। ऐसे देखी अपने फेफड़ा का बहुत नुकसान होता है। धूम्रपान देखी जानलेवा होते है चाहे तंबाकू के रूप में हो बीड़ी या सिगरेट के रूप में। देखी जान है तो जहान है। देखबे मावत है कि लोग गुटका खाए रहे हमा गुटका से मुहे में कैंसर हो की संभावना रहा थी वे। अपना गुटका तंबाकू कुछ खरीदी ओके पैकेट में बड़े अक्षरन में लिखा रहा था कि ये हानिकारक है फेरो हमार भैया बहनी हरे पैसा दई के बेरामी रूपी राक्षस का अपने घरे लयावत हमा। देखी अपना पंचे जागरूक हैं अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत रही। जब तन स्वस्थ रही तब मन खुश रही। घरे केर मुखिया का दुई रोज का जो देखी जर बुखार आ जाती तो कैसा लागत है तो सोची भला यह तंबाकू के सेवन कितना नुकसानदायक है। जो मनई ऐसे कौनो बड़ी बेरामी मपरी जई तो का हुई पूरा जीवन नरक बन जात है। आ पूरा देखी घरे के पैसा दाम मनी खेत पाते बेच के जैसे जो कैंसर होइगा और कोनो बिरामी होई गए ता मने कहत है कि धनव जात है धर्मो जात है। त एहसे सबको मने आई मिलजुल के तंबाकू के सेवन ना करे के संकल्प ली। सरकार के या विश्व तंबाकू निषेध दिवस मा आपन आपन देखी सहभागिता निभाई। आओ अब कुछ गीत गाना हो जाए काहे कि मलिमास चल रहा है। अब मलिमास मा सब भोलेनाथ के पूजा अर्चना करा थे मैं ता जो अपना पचिन का हम बम्भुलिया सुनवा दे तो ठीक रही ना ता हले सुनी बम्भुलिया।

मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावना

भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।

0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: भैया बहनी, अब आई या बघेली भेंट पत कहा सुनी प्रख्यात बघेली लोक गायिका मणिमाला सिंह बघेल से। भैया बहनी, जैसन की अपना पचे सबको जानी थे कि हम पचे हर इतवार का अपने कार्यक्रम चौपाल मा बघेली बतकहाओ लेके आई थे, यह तारतम मा आज हमारे कार्यक्रम मा मणिमाला सिंह बघेल जी पधारी है, जे बिंद के लोक गायिका और साथ है महिला बाल विकास मा पर्यवेक्षक के पद मा कार्यरत है। ता बहिनी, हमारे कार्यक्रम मा अपना के बहुत बहुत स्वागत है। बहिनी, अपना हमारे सुनैयन का अपने बारे मा पहले बताई, बघेली लोकगीतन से अपना के जुड़ाव कैसन के भा, यह साथ है हमारे श्रोतन का बताई।
1: रेखा बहनी, आज अपना हमरे घरे आयन और यह हमारे परम सौभाग्य है कि आज अपना हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सुनैया भैया बहनी का राम राम करब, प्रणाम करब और ये अपना का धन्यवाद दा कि अपना आज बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं कि अपना का लोक गीतन से जुड़ाव कैसन रहा। सच बात तो यह है कि हमार मम्मा थोड़ी बहुत गावत रही, जब गावत रही तो बड़े अच्छे से गावत रही, बड़े मन से गावत रही। एक ही बात हमारे पड़ोस में गुप्ता परिवार रहा, कुछ सुनसुनी परिवार रहा, तो उनके यहाँ जरूर ढोलक बजे। कुछ छोट छोट आयोजन है, जैसे जन्मदिन में कुछ हुआ तो बड़े जैसे बहुत ढंग से उनके यहाँ कार्यक्रम है। और जब कार्यक्रम हो तो शाम को ढोलकी जरूर बजे। और जब ढोलकी बजे, अगर मम्मा कहे कि अंगीति से नहीं जाएगा तो चीती से भाग जाते रहे। और ढोलक जरूर सुनी और जो भौजी अरे हमारे गावा करे ना, उनके मन में कहीं निहारी की कैसे गलती है, कितना लिखा गलती है। तो धीरे धीरे उनके सुर में सुर मिलाए, जॉब शुरू कर दिए। पहले तो समझ में नहीं आवा कि का गलती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़े हो गए तो समझ में आवत गए कि ये बधाई गलती है, ये सोहर गलती है, यह गलती है। मतलब वो मैं से हमें इंटरेस्ट आवाद का और हम उनकर जन ढोलकी के आवाज ही हमें बड़ी प्रिय लागे, उनका राग बड़ी प्रिय लागे, उनकर बोल बड़े प्रिय लागे। ये तो मतलब लोकगीता से जुड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है। दूसरी बात, स्कूल में प्रभात फेरी हुए तो मार्च साहब लोग आगे खड़ा कर दे, सरस्वती पूजन हो रहा है तो जरूर सरस्वती वंदना गाने खातिर करे। और सबसे बड़ी बात, स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा। हर शनिवार का वहन सांस्कृतिक मतलब संध्या होत रही, तो मीटिंग हुए और आधा टाइम मतलब हाफ टाइम के बाद ये पूरे कार्यक्रम हुए, अंतरक्षरी हुए, कहीं कुछ हुए। यह हमार जो स्कूल रही बहुत मतलब वखर बल रहा, हम बहुत सीखे अपना से बताए।
0: मतलब यह प्रेरणा अपना का स्कूलों से मिली, घर से तो मिलवे स्कूल से मिली।
1: अपना का माहौल बनत गा, थोड़ी के गावत अरे बिटिया तो बहुत लिखा गावत, तो उत्साह बढ़त का है ना। जो हमारे ग्रास रूट लेवल रहा मतलब जमीनी रहे, हमें बहुत समझावत रहे, वहाँ ये गावा करा ढंगे लागत है। एक जन हमारे गांव में पंडित आये रही, वह जसरी दादी की मिसेस, बड़े प्यार से बोला है कि हाँ बेटा बतावा। उनकर चाची है, उनका मिसेस बहुत हमें गाना सिखा डाले। जब हम थोड़ी थोड़ी बड़े बहन अठवीं सतवीं बहन, हमें बहुत गाना, आज जो हम गाना गाई थे तो जब हम गाना गाई थे हमें उनकर आवाज सुनाई देती, हम उनकर कंठ सुनाई देते, उनकर चेहरा दिखाई देते कि अरे भौजी हमें बता रही। तो मतलब यह हमारे मेमोरी में आजम है।
0: बहनी, अब अपना बघेली लोकगीत की खासियत का होती और यह हमारे गांव समाज की संस्कृति का कैसन दिखावा थी
1: बताए ना। जैसे जब भौजी हरे बधाई गावत रहे तो लागा कि हाँ इनके घर में बधाई बजा थी। सोहर गावे तो लागा सोहर हो रहा है, जैसे अपना की हिंदू भी गा रहे तो लागा जैसे सावन भादो का सब लोग जाते हो, खजनैया सराय में जाते हो, वो राखी बांधे जाते हो। मतलब वो दृश्य जब गीत को गावत है, हम वो चाहे को दृश्य सामने आ जाए, बिल्कुल मतलब अनुभूति लागत थी कि ये संस्कार हो रहा है, ये मतलब ये जैसे कजरी है भगवा होली ये चीज दिखा लगती है, भगवा का रंग बरसे लागत है, तो भगत होती तो लागत की देवी माता आ गई।
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब देवी की आराधना सब लोग कर रहे हैं। ये जैसे जैसे गाना होते गाना हमारे मतलब वो चीज का प्रतिबिंब खड़ा कर देते, यहाँ ये चीज अपने के सामने हो रही, तो वह हमें संस्कृति का मतलब बढ़ावा देती, संस्कृति का मजबूत बनावा थी। अब एक चीज और मजबूत तो बनावती बनावा थी, भाईचारा बढ़ावा थी।
0: हाँ बिल्कुल,
1: जैसे कि एक जने गाना गाए तो तीन जने और आ जाए, तीन फिर पांच जने फिर मतलब मृदंग होने लगे, मृदंग बड़े अच्छे ढंग से होती, मतलब गलत ढंग से नहीं की मृदंग ही हरे, फिर गाना एक अगर मेरिया गाई बिटिया गाई तो 30 जने फिर उफालो करी। तो आज हमारे संस्कृति क्या बहुत मजबूत करती और संस्कृत में बड़ी अमिट छाप, लोकगीतन के अमिट छाप ही जाने, आज वो चीज दिखा थी प्रतिबिंबित होती पर आईना दिखा देती हाँ ये चीज यह संस्कार हो रहा है। अगर होली हो रही तो होली लग रही, अगर अंजलि हो रही तो लागत थी कि बिटिया की अंजलि हो रही। इस तरह से हमारे लोकगीत जो है ये संस्कृत हमारे लोक संस्कृति का मजबूत करा थे।
0: अच्छा मणिमाला बहनी, आज के युवन में बघेली लोकगीत के प्रति रुचि कैसा नहीं का नई पीढ़ी इन्हें सीख रही है?
1: देखिए बिल्कुल अच्छा प्रश्न अपना का, नई पीढ़ी तो बड़ा इंटरेस्ट रखती थी पहले, तो जब हम छोट रहे हैं तो जब हम लोग गीत गावा करी कर अरे मणिमाला तो लोग गीत गाती है, तो और कुछ नहीं गाती लोग गीत गाती
0: है।
1: लेकिन आज देखी थे कि जितने बड़े हम रहे तो उतनी बड़ी आज की बिटिया जो है तो हमारे पास कम से कम 150 बिटिया आ जाती है, पूछे कि विद्या हमको सिखा दे, विद्या हमको बता दे, तो मतलब जो आज की जनरेशन है जो आज की पीढ़ी है बड़ा इंटरेस्ट रखा थे, उनका इंटरेस्ट देख के हमें बड़ा अच्छा लगा था। और देखी यमा लोकगीतन को बड़ा हवा मिला था और आज हम अपना गाए थे और नई पीढ़ी गाई, मतलब लोकगीत कंठ दर कंठ चले रहेंगे, इनका यात्रा अनवरत चलत रही, कभी बंद ना होने। आज हम पंच जो गाए थे को लिखी सी को पढ़ी सी नहीं, हम पंच सुन के गा रहे हैं, तो ऐसे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत सुन के गाए। लेकिन हमने तो कहा कि पहले कुछ साल पहले जब हम पंच छोटे हैं इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मेरी पिटियन मने लड़कन में, आज लड़कों पूछा थे, युवा पूछा थे, किशोरावस्था वाले पूछा थे, अब बड़े वाले पूछे थे, जो बड़े को होगा कि हम ये गाना गाने का नहीं बताए दे, हमारे कंपटीशन है, हमारे कॉलेज में कंपटीशन है, हम ये गाना बता दे, हम जीत जाए के अंदर ललक है।
0: अच्छा ये बताई बहनी कि कहा लोकगीत गावे खातिर कोनो खास प्रशिक्षण के जरूरत होती कि या परंपरा माने या परंपरा से अपने सीखा जाता है?
1: देखी वो लोकगीत सीखने खातिर अगर कोई बहुत भूर करे अलग बात है कि हम क्लास नहीं देता फलाना था ढकाना ऐसा कुछ नहीं, लेके तो बड़े अच्छे माहौल में कोई का जीना नहीं कर रहे, जितने गुरुद्वारे होते मीठा वाला, लेकिन ये जान ले कि यही सीखने खातिर लोकगीत सीखे खाता कोहू के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं
0: पड़े।
1: हाँ ये तो जरूरी की जो कोई गावत है अगर हमें ध्यान से सुना ध्यान से सुनी थे हमारा सबसे बड़ा प्रशिक्षण वहा है, जो ट्रेनर है जो सुना रहा है वह सबसे बड़ा
0: ड्राइव सबसे बड़ा। देखी बहनी अपना के अनुसार बघेली लोकगीतन का बचाए के राख है और आगे बढ़ावे खातिर हम ही हमारे सुनैयन का प्रयास करे का चाहिए?
1: हम तो यह कहते कि अगर कोहू मा अपने कोहू के लड़का हो चाहे बच्चा हो चाहे नात हो चाहे रिश्तेदार हो अगर वो मा थोड़को दिखाते कि संभावना दिखाते कि ये बच्चा गाए तो वही वो माहौल जरूर दे, वो के दवाई में रखी गे नहीं अब तुम पढ़ाए गए परीक्षा हो परीक्षा के टाइम में सही कॉन्शियस रहना चाहिए, लेकिन यह नहीं की तुम्हें पढ़ाए गए तुम्हें अपना दमन नहीं दे, अरे 10 मिनट कम गा लेंगे अगर अपने कहीं बान तान हो रहा है लड़का अगर उनके बैठा थे उन्हें बैठे दे, उनका जो रुचि है वही आगे बढ़ाई, नहीं कि वही
0: दबा
1: रखना चाहिए, मतलब वही प्रयास करें कि कोई वो माहौल मिले वो करे उत्साह बढ़ाए। तो देखिए जो लोकगीत है तो उन्हें बढ़ावा मिली और बढ़ावा मिली ऐसे बढ़ावा मिली जब हमने को सुनाई तूने अपने बच्चन को सुनाओ अपने घर वालों को सुनाओ अपने पड़ोस वालों को सुनाओ नाते रिश्तेदारों को सुनाओ। अब तो अपने बच्चे अगर अपना छोड़ तो

0: बात में अगर भूमि से अपना सुनत
1: रहेगा
0: हम भी प्रोत्साहित करी थे अब 5 साल के हम तो कहते कि जौन सुनैया भैया बहनी हमारा आवाज सुनत है क्योंकि घर में छोटा छोटा लड़का बच्चा है चाहे आपन हो चाहे पड़ोस के हो चाहे को क्यों अगर उनमें थोड़को संभावना दिखाती भाई अपना आगे बढ़ाए अपना अपना खुद एक प्रयास करे बिना सोची कि अरे दूसरे के लड़का तंग क्या करे नहीं नहीं अपना की रुचि को बढ़ाई खर उत्साह बढ़ाई और देखी कि फिर आगे वो क्या करे थे।
1: अच्छा माला बहनी अपना अपने अनुभव से कोनो ऐसा रोचक किस्सा या कि यादगार मंच प्रस्तुति जवन हो अपना के हमारे श्रोतन के साथ साझा करी।
0: सबसे इंटरेस्टिंग एक थे मंच रहा कि बाबापुर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रहे तो एक बार उन बहुत बड़ी कार्यशाला होत रहे बहुत बड़े मतलब कोनो 30 साल से नीचे का सुनैया नहीं रहा तो सब बड़े बड़े लोग रहे अब हम 8 बजे से गाना गाने लागन तो उमा मतलब ऐसा लोग रहा है कि जो सोहर सुने बधाई सुने गलहाई सुने नचनहाई सुने बेलनहाई सुने अपना के कुआं पूजे के सुने कुआं पूजे के कहा कट गाना होते हम चैलेंजिंग हमारे खाते कुआं पूजे के 5 से गाना लोग एट गाना मतलब 5 से गाना जब अपसूता जाती तो तब गावा थे कौन ले बेला कनारी छमा छम पानी कानी केरी तो देखी वो उसे लोग कहा थे कि तुम इतनी सुंदर काहे है भगवान इतने सुंदर कैसे बनाए हैं तो वो मेरा जवाब देती कि नहीं ये सुंदरता जाऊ ये जो सुंदरता है यह हमारे सास ससुर के भी हमारे अलिबात जो सुंदर लागी थे अपने ही बात करा से अपना एक चीज जब मैं बतावत रहे जो हुआ इंटरेस्टिंग बात रही तो शुरू का हमार मंच आए पहला मंच तो कौन की लोग गीत मतलब वो के 5 से गाना होते वो अपना से बना थे इतना सुनाई तो इत्तेफाक से बहुत भौजी दीदी हमके सुने जा रहे उन्हीं भौजी हमके याद आई तो 500 गाना हम जैसे अपना कट्ठे गाना बताए ऐसे 500 गाना सुना दिए वे कहें कि अपना वो सुनाई जब होली सुनाई होली सुना में लागन तो कहें अपना अभी होली सुनाई मतलब इतना इंटरेस्ट हम नहीं देखे कि हम पहली बार मंच में बैठा है अपने साथियों के साथ रहे तो इतने इंटरेस्ट के साथ लोग हमसे पूछत रहे और सुनत रहे और बताए कौन 36 साल से नीचे का 30 साल से नीचे का श्रोता नहीं रहा अब हम अपना से बताई अरे वो रेखा बहनी 7 घंटा गाना गाए
1: अरे वाह
0: फिर विधानसभा अध्यक्ष आए कि अब बंद करी नहीं तो हमारा हम जो कल हमारा कार्यक्रम है सब गड़बड़ हो जाई ना सुना बंद करिए ना अपना सुनाओ बंद करब हमारे कल का कार्यक्रम गड़बड़ हो गई तो अब बंद कर दी 7 घंटा लोग बड़े इंटरेस्ट से सुने तो हमारे खातिर बहुत बड़ा वो रहा मैसेज रहा चैलेंज रहा और वो चैलेंज का हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही लेकिन हम वही समझन उन्हें अपन जो हमारे अंदर के रहे मतलब जज्बात रहे हम उन्हें लेके अभी पूर करे का पूरा प्रयास करे अभी हम बताई थी कि हमारे अंदर कोनो कैपेबिलिटी नहीं आए आजो नहीं आए हम कुछ नहीं जाने लेकिन अगर अपना कह दिया ये सुना दे तो हम अपना को सुना के चले
1: बिल्कुल बहनी अपना अंतिम मां हमारे श्रोतन खातिर बघेली लोकगीत के कोनो पंक्ति अति छोट का अंश सुना दे
0: अपना अब अपने बता दे कि अपना कहीं कहा सुना दे या हम अपने ऊपर डिपेंड करें चल
1: अपना कौन लोकगीत सुना दे हाँ हाँ जो अपना का सबसे अच्छी लागत हो वह हमारे श्रोतन का सुना दे
0: कि जब हम कोई गाना गावत है ऐसा लागत है कि वह चीज अपना का वोकर झांकी दिखा रहे हैं तो जब बिटिया का
1: हाँ
0: विदाई उनको होते है है ना और न बिटिया महतारी से बोले न महतारी बिटिया से बोले लेकिन रात भर बिटिया के विदाई के तैयारी महतारी कर रही
1: करती
0: बिना बोले अखर मन कितना भरा है वो नहीं बोले और वो बिटिया का मन कितना भरा है वो नहीं बोल रही लेकिन एक दूसरे को समझ रही है ना आप वो चिमनी जला के वह महतारी होकर तैयारी कर रही बिटिया विदाई के दूसरे दिन पहले दिन अपने बेटे को कोई डांट ही देते लेकिन वो दिन बारी बिल्कुल नहीं डांट रही अखरे लाइन का है अपना सुनाई थी बड़ी मार्मिक लाइन है

0: वाह माला वहिनी, ऐसा लाग के सही मा बिटिया के विदाई हो रही है। अपना यह बहुत निकहा या बहुत निकही लोग गीत सुना और हम अंत मा अपना से यह जाने चाह कि आकाशवाणी के 90 बरिस पूर होए के अवसर मा अपना का कह चाहब और लोक गीतन का आगे बढ़ावे आकाशवाणी के का भूमिका रही है।
1: देखिए हम अपना से कहें ना,
0: हाँ
1: गावत रहे,
0: हाँ
1: गावत हैं तो गावत रह जाते हैं। अगर आकाशवाणी न होता,
0: हाँ हाँ
1: ठीक है, हमारा सौभाग्य से इनके शादी हुई है,
0: हाँ,
1: और हमें माहौल मिला, हमें लोग मिले जो मतलब लोग हमें बढ़ावा दी कि अपना आकाशवाणी चली,
0: हाँ,
1: और आकाशवाणी में हम गए,
0: हाँ,
1: और उनके जो पैरामीटर होते उनमें थोड़ी देर सफल हुए और हमें वो प्लेटफॉर्म मिला। तो आज जब हम गाई थे तो जब बजाई थे जब सुनाई थे सबका, वह अगर को का योगदान होता है, को का क्रेडिट जाती तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के जाती। आकाशवाणी में कितना अच्छा माहौल, कितना सुव्यवस्थित माहौल, कभी कोई से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई को चुगली नहीं, चपाटी नहीं, और हनकस माहौल जहाँ मतलब अपना की मतलब आदमी कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज देखने को मिला थे, नैतिक मूल्य देखने को मिला थे, क्या है आकाशवाणी जैसे जगह।
0: हाँ,
1: अगर आकाशवाणी न हो तो आज अपना हमारे पास न आयोजन,
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो आकाशवाणी के बहुत बड़ा योगदान है। हम तो कहा कि आकाशवाणी में जैसे आज तक ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहे, टुडे टुमारो फॉरएवर।
0: हाँ, देखिए माला बहनी, अपना हमारे कार्यक्रम में आए गांव के माटी के महक लेके, और इतनी नहीं कही जन्मही दिन है हमारे सुनैया भैया बहनी हर इनका अपना के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो अपना को धन्यवाद खाते धन्यवाद।
2: भैया बहनी अब सबको सुनत रहन गांव के माटी के महक या भेट बत कहाँ जौने का प्रख्यात बघेली लोक गायिका मणिमाला सिंह बघेल जी या बत कहाँ भेट बत कहाँ सुनवाइन सुनाइन। आ देखी भैया बहनी तमाखू के बात अभी पहले चलत रही है तो एहमा निकोटीन जैसा घातक रसायन होत हवे जौन फेफड़ा के कैंसर और दिल के दौरा स्ट्रोक मुंह और गला के कैंसर जैसा जानलेवा बेरामी के कारण बनत है। ऐसे पाचन तंत्र कमजोर होत है और हमारे बहिनी हरिन का गर्भ धारण करे में प्रभावित करत हवे। तमाखू खाए से दांत देखी पीले हो जात हमा, मुंह से दुर्गंध आवत ही, मसूड़ा कमजोर हो के सिकुड़ जात है मैं। तमाखू केर आदत व्यक्ति का शारीरिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचावत है। देखी तमाखू के सेवन धीरे धीरे शरीर का खोखल कह देता है और जानलेवा बिरामी होती है। फेफड़ा के कार्य क्षमता धीरे धीरे कई के कम हो लागत है। अस्थमा सांस नली मसूजन

और टीबी के खतरा बढ़ी जात है भैया बहनी। और बहुत का ऐसा नुकसान हमा कि गिनाबे लागब तेठे ग्रंथ लिखी जाई। अपना पंचे तमाकू जैसा हानिकारक चीजन का बिल्कुल छोड़ दे, जीव रही तब सब ठीक लागी। बहुत लोग कहत हमा कि कुछ नहीं नुकसान हुए, अरे नियमित रूप से तमाकू के सेवन से हृदय रोग के खतरा बढ़ी जात हबे, काहे कि यह रक्तचाप और कोलेस्ट्रोल का के स्तर का बढ़ावत हबे। अब भैया बहनी बरबत कहाँ बहुत भा, आओ देखी अपना पंचन से हमार यह निवेदन है कि यह तंबाकू केर अपना पचे त्याग करी, स्वस्थ जिंदगी जी, अपने परिवार के साथ है सुखी जीवन बिताई। अब होती चले केर जूना तलिखी कार्यक्रम केर पता, चौपाल केर चिट्ठी द्वारा उपनिदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा मध्य प्रदेश पिन कोड हवे 4860001 त इहे पता में रही। अपना पंचन के पाती के परीखा और देई आज्ञा कार्यक्रम के सबे सुनैयन का राधा बहिनी के राम राम, जय जवान जय किसान।

0: लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुर्खियों में, जिसमें हम आज मन की बात के 134वें संस्करण में उठाए गए प्रमुख विषयों और उनसे जुड़े संदेशों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में खेल, पर्यावरण, संस्कृति, विज्ञान और समाज सेवा जैसे अनेक प्रेरक विषयों को स्थान दिया गया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन। अशोक जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अशोक जी, मन की बात के इस संस्करण के प्रमुख बिंदु क्या रहे और इनमें कौन से विषय आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगे?
3: देखिए, महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश के जनता के साथ संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर तो वो अपने विचार भी व्यक्त करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम आज की बात करें तो आज तो सबसे प्रमुख बात जो प्रधानमंत्री ने की वो थी मौसम को लेकर, कि लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दी और इसके साथ साथ उन्होंने जो गर्मी में इससे निपटने के घरेलू नुस्खे भी बताए। और जो हमारे पेयजल हैं या जैसे हमारे देश में आम के बारे में, शरबत के बारे में, दक्षिण भारत के, तो उन सब की भी चर्चा की। और उसके साथ साथ उन्होंने भारत के जो खिलाड़ी हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो जहां जहां भी कुछ एक अचीवमेंट करते हैं उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो आज उन्होंने जो खेल हुए हैं राष्ट्रीय खेलों में, जो नए कीर्तिमान हुए हैं, उनकी भी चर्चा की। उसके साथ उन्होंने जो अपने विदेशी दौरे हुए उसमें उनकी चर्चा की कि कैसे हमको हमारे पुराने विरासत जो ताम्र पत्र वापस किए गए, और इसी तरह से वही नीदरलैंड की यात्रा के दौरान हुए। फिर तो इस तरह के उन्होंने 5-7 जो बहुत मुख्य मुद्दे थे। फिर उन्होंने स्विमिंग क्लब की बात की, नदियों को सफाई करने के बारे में जो युवा अभियान चला रहे हैं उनकी भी चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर हम मौसम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। लेकिन हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने जिस तरह से आज 100 मीटर की दौड़ में 2 दिनों के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को 3 बार तोड़ा, और 2 जो एथलीट थे विशेष तौर से उनकी चर्चा भी की और उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की और काफी लंबी समय तक बातचीत की। तो ये खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देने का जो प्रधानमंत्री का एक संकल्प है वो भी आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया।
2: और सबसे पहले खेलों की ही बात कर लेते हैं क्योंकि युवाओं के लिए ये विशेष रूप से प्रिय विषय है। भारतीय एथलीटों की हाल की उपलब्धियों को भारत में खेल संस्कृति के विकास से आप किस तरह से जोड़कर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि पीएम खेलों का और खेलों से जुड़ी हुई उपलब्धियों का अक्सर उल्लेख करते हैं।
3: बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है और ये मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जब जब हमारे देश के खिलाड़ी, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनको जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वयं बात करते हैं। और कई बार तो हमारी जैसे T20 की क्रिकेट टीम जब विश्व कप जीत कर आई तो उनको अपने घर पर बुलाया और एक एक के साथ अलग से बात की, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के जो लोग हैं देश हित में, समाज हित में, जब ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे होते हैं और जब उनके विषय में हम सुनते हैं तो हमें भी नई प्रेरणा मिलती है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत ही उन्होंने एथलीट्स के साथ की कि देश की ऐसी उपलब्धि जो हुई है, और खासतौर से झारखंड के रांची में जो इस समय नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कॉम्पिटिशन हुआ उसमें 800 एथलीटों ने भाग लिया जो देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उन्होंने वीरेंद्र वीर सिंह और विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीना, कुलदीप कुमार, इनके अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए रिकॉर्डों की चर्चा की। और 2 एथलीट हम बात करेंगे तो वीरेंद्र वर सिंह और अनिमेश, इनके साथ तो टेलीफोन पर भी बात की और उनके संस्मरण सीखे, बात की और उनको खूब प्रोत्साहित किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक तरह से उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जो है वो खेलों के बारे में इतने चिंतित हैं कि आज मन की बात के लगभग 10 मिनट तो उन्होंने खेलों के बारे में चर्चा की।
2: अशोक जी, विदेशों से वापस लाई जा रही भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों का हमारे इतिहास और विरासत संरक्षण के लिए क्या महत्व है, इस पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या कहा है।
4: नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
2: अशोक जी, अभी हमने प्रधानमंत्री की बात सुनी और ये जो पहल है और ये जो सब कुछ अभी प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है, भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, प्रधानमंत्री को पिछले 12 वर्ष में अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया के अन्य देशों ने कितनी ही ऐसी भारत की जो विरासत है वो वापस लौटाई है। अगर उसकी कैटलॉग बनाई जाए तो हजारों में है, और ये केवल प्रधानमंत्री के प्रयास के कारण हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो हमारी एक परंपरा है, जो हमारा इतिहास है, वो हमको वापस मिलना चाहिए। क्योंकि हर बार जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की स्थानीय सरकार ये कोशिश करती है कि हम प्रधानमंत्री को उनकी विरासत किस तरह से लौटा सकते हैं। और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नीदरलैंड गए थे तो वहां पर उनकी जो बातचीत हुई और उसमें विशेष समारोह हुआ और प्रधानमंत्री नीदरलैंड के भी मौजूद थे, और उस विशेष समारोह में जैसा भी हमने सुना, चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को सौंपी गई, एक विशेष कार्यक्रम हुआ, और उसमें देश विदेश से लगातार अब संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया भर में तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है, क्योंकि इस ताम्र पट्टिकाओं के प्रति लोगों की बहुत जिज्ञासा थी। और इससे जुड़े हुए जो बातें प्रधानमंत्री ने स्वयं

0: साझा की, इनमें से 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से जैसा हम अभी सुन रहे थे, राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज चोला के एक वचन को पूरा करने के लिए जुड़ी हुई है। जो उस समय चोला वंश की जो उपलब्धियां थी उसका भी वर्णन मिलता है। तो इससे पता ये चलता है चोला साम्राज्य जो था उसकी समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की भी इससे जानकारी मिलती है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है, जिसकी भी अभी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। ये जो कुछ हो रहा है, ये सारी जो धरोहर है, ये भारत में जब वापिस आएंगी तो भारत की धरोहर संस्कृति विरासत के बारे में हमारी नई जो जनरेशन आ रही है उनकी भी जानकारी बढ़ेगी।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं में खगोल विज्ञान और विज्ञान के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: अशोक जी, जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है उसे आप भारत के भविष्य के लिए कितना सकारात्मक मानते हैं, और युवाओं में खासकर जो खगोल विज्ञान को लेकर जो अब दिलचस्पी बढ़ रही है उस दृष्टिकोण से?
0: देखिए, रात को तारों को निहारना ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। तो एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप्स और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा लोग टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कहा कि राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्थान भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ पुस्तकें, लाइब्रेरी, टेलीस्कोप की सुविधाएं भी हैं। तो इसकी तरफ युवा वर्ग को आकर्षित करने की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसे हमने सुना प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरी मौजूद हैं, और ये जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं, नेविगेशन हो, पांचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। और हमारे यहाँ तो एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में लोगों में उत्सुकता जगाई है। तो इसको और एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, और आज के युवाओं में भी इस प्रकार से काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री की एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: अशोक जी, गंगा डॉल्फिन संरक्षण और नदी स्वच्छता जैसी पहल पर्यावरण संरक्षण के व्यापक लक्ष्य में किस प्रकार योगदान दे सकती है?
0: आज एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मन की बात में जब प्रधानमंत्री इसकी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर विजुअल भी दिखाया गया कि कैसे भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश के उस घटना स्थल पर किस प्रकार से काम कर रही है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी, और ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये जो एम्बुलेंस है उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची, और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया, और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। तो एक जीवन जो है उसको लौटाया गया। ये एक साधारण बात हो सकती है, लेकिन डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस जो है ये एक चलता फिरता अस्पताल है, और इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, विशेष स्ट्रेचर्स हैं, बचाव के उपकरण हैं। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंसे या नदी से कट जाए तो उसकी तुरंत सहायता की जा सकती है। तो जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं।

0: तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर को भी बचाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री का ध्यान इन बातों की ओर भी जाता है कि कैसे देश में इस प्रकार का जो प्रकृति की धरोहर है उनको बचाने की दृष्टि से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। यानी ये जो अभियान चला है चलता फिरता अस्पताल वाला डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस, ये अपने आप में एक अजूबा है, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं आज सब लोग टेलीविजन पर उसको देखकर सचमुच में आश्चर्यचकित हुए।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री के मन की बात का ये संस्करण हमें प्रेरित करता है कि सकारात्मक प्रयास, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प से बड़े परिवर्तन संभव है। अशोक जी, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम डगर विकास के। विषय है प्रधानमंत्री ई विद्या योजना और ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: डगर विकास की। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भारत सरकार की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के संदर्भ में। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ई विद्या योजना डिजिटल शिक्षा की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न डिजिटल और दूरस्थ माध्यमों के जरिए छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत 30 मई 2020 से की गई थी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का मुख्य लक्ष्य देश के सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। साथ ही पीएम ई विद्या में पारदर्शिता बढ़ाते हुए कम संसाधनों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डीटीएच और टीवी चैनलों के माध्यम से, साथ ही ऑनलाइन रूप से देश के सभी विद्यार्थियों तक सुलभ रूप से पहुँच रही है। श्रोताओं, क्या है पीएम ई विद्या योजना, इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आप हैं छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएम ई विद्या के प्रभारी और माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी की एचओडी डॉक्टर अमिता आचार्या।
1: 20 सितंबर 2004 को एजुसेट एक सैटेलाइट भारत द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा शहर का बच्चा एक साथ जुड़कर एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके स्थापित होने के बाद दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा पहुंचाना संभव हो गया। जो पहाड़ी इलाके के बच्चे थे, जहां बिजली

हैं, सड़क नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ते? तो इस सैटेलाइट के छोड़ने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के कोर्स हुए और टीचर्स को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो स्लाइड बनाते हैं, कैसे पोर्टल पे

0: कैसे टेप करते हैं, फिर कैसे दोनों को कोऑर्डिनेट करते हैं, और जिससे उसके आ जाने के बाद बहुत सारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब आपस में जुड़ गए। जिस प्रकार चिकित्सालयों में और न्यायालयों में आजकल सुविधा हो गई, उसी प्रकार 2000 के बाद, एजुकेट के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति आ गई थी। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि कम समय में, कम लागत में बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए। इसी शिक्षा के बाद 17 मई 2020 से एक और प्रोग्राम जोड़ा गया। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विश्वविद्यालयों को, स्कूल को संचार माध्यम के द्वारा जोड़ा जाए, रेडियो के द्वारा, भाई सैटेलाइट के द्वारा, रेडियो रहते हैं, टीवी और मोबाइल, इनसे जोड़ा गया, जिससे जिनके पास सैटेलाइट है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टीवी है, जिनके पास रेडियो है, उन सारे माध्यमों से बच्चे जुड़ सके। इसका मेन उद्देश्य था कि बच्चे को, मान लो वो अनुपस्थित है तो उसको गृह कार्य भी प्राप्त हो सके, बच्चा नहीं जा पा रहा किसी कारणों से तो उन बच्चों को बिना जाए वो शिक्षा घर से प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल में बैठा सबसे बात का कोने का विद्यार्थी है और शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास साधन है, ना उनके पास लाइट है, तो वो कैसे शिक्षा करेगा, कैसे ग्रहण करेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज भारत का दूरस्थ का विद्यार्थी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे ग्रामीण का हो, चाहे SC ST का हो, अगर उसके पास बड़े संसाधन नहीं है तो मोबाइल की सहायता से वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वयं पोर्टल स्थापित किया गया है उसमें क्रेडिट के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, हर क्षेत्र का उसमें ज्ञान है, बड़े बड़े प्रशिक्षित लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लगे हैं, प्रोफेसर लगे हुए हैं जो अपनी वेबसाइट डाले हुए हैं, और हर विषय का, हर भाषा में, सबसे बड़ी बात हिंदी इंग्लिश में तो था ही, इसके अलावा हर विषय का। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है तो वो हिंदी में झेपता है या संस्कृत में या मलयालम में, वो स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है कि भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को सेंट्रलाइज किया गया है। इंग्लिश का मेन सिलेबस है, उससे हर भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है, जैसे हर क्षेत्रीय भाषा का विद्यार्थी उसको प्राप्त कर सके। दूसरी चीज वैल्यू एडिट कोर्स बनाया गया है। वैल्यू एडिट कोर्स का मतलब है मूल्य आधारित शिक्षा। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी मूल्य है, कुछ भी बनाना आता है, चपाती बनाना आता है, बहुत अच्छा पराठा बनाना आता है, कोई भी कौशल है, उस कौशल के आधार पे वो शिक्षा ग्रहण करे और सरकार उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण देती है, जिससे वो प्रशिक्षित होता है, उसे मेंटर मिलता है, प्रशिक्षण के बाद वो उस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए एक नई चीज बनाता है और उसका उसे मूल्य पता रहता है, उसका वैल्यू का मतलब मूल्य आधारित। तो उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वो पेटेंट करा सकता है, GI टैग करवा सकता है, कुछ भी कॉपीराइट करा सकता है। तो ये अभी उसको भी स्वयं पोर्टल से जोड़ा गया है कि जिन विश्वविद्यालयों में BAC के वैल्यू एडिट कोर्स के टीचर्स नहीं है या उतनी सुविधा नहीं है, तो स्वयं पोर्टल में अगर बच्चा वहाँ एडमिशन लेता है तो उस विषय से संबंधित ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है किसी भी भाषा में।
1: जी मैडम, हम इसमें एक और चीज पूछना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ई विद्या योजना है, इसमें कुछ और माध्यम जुड़े हैं, जैसे रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, कुछ पोर्टल और भी जुड़े हैं, इसमें कुछ और माध्यम भी जुड़े गए हैं।
0: हाँ, एक है दीक्षा पोर्टल, PME विद्या के मुख्य घटक है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को ई बुक मिली है, वीडियो मिले, क्विज है और बहुत सारी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई कि कैसे बच्चों को कभी भी कोई भी जानकारी किसी समय वो अंदर हो सकते हैं और उन्हें प्राप्त हो जाती है। प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे IIT है, JEE है, NEET है, PSC है, सारी भाषाओं में, बहुभाषीय माध्यम में अध्ययन सामग्री को इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है, पढ़ सकता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। PME विद्या के मुख्य घटकों के द्वारा पूरा भारत एक हो गया है और पूरा भारत जब एक हो जाएगा तो विकास की दर भी एक ही दशा में बहेगी और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा।
2: श्रोताओं, PME विद्या योजना में सरकार द्वारा कई तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल चैनल खोले गए हैं, जिनमें स्वयं पोर्टल, स्वयं प्रभा TV चैनल, रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट प्रसार

0: कारण से उन क्षेत्रों में बच्चों के लिए विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जो किसी कारण से कक्षा में नहीं पहुंच सकते और ये शिक्षा काफी प्रभावी भी हो रही है। पीएम ई विद्या योजना के क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के लिए सुलभ सुविधाओं के संबंध में हमें जानकारी देते हुए आप हैं शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के पीएम ई विद्या के प्रभारी वरिष्ठ शिक्षक नीरज वाजपेयी।
1: ये माननीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वृहद स्तर का व्यापक डिजिटल शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12वीं तक की स्कूली शिक्षा के छात्रों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे कुछ युवाओं को टीवी, इंटरनेट और रेडियो के माध्यम से हाई क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्रदान करना है, जिससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें मिल सके। और इसको संचालित करने के लिए हमारे भारत सरकार के अंतर्गत जो आईटी मंत्रालय है और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इन सबके समन्वय से प्रमुख रूप से कई पोर्टल्स चल रहे हैं, जिसमें दीक्षा पोर्टल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये दीक्षा पोर्टल है, इसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान है। दीक्षा पोर्टल में स्कूल शिक्षा के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वन नेशन और वन डिजिटल प्लेटफॉर्म रूप में काम करता है। भारत के सभी राज्यों और एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई जितनी भी पुस्तकें हैं और उन सारी पुस्तकों की डिजिटल सामग्री उसमें अपलोड है। अभी कोविड काल के दौरान जब हम स्कूलों को बंद पा रहे थे, तब हमने इसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए स्वयं से 16 प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण इस दीक्षा पोर्टल पे दिए हुए थे। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इसमें जो पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग, ये इसका शॉर्ट वर्जन है दीक्षा। तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़ा प्लेटफॉर्म जो पूरे भारत में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा की बांट जो रहे छात्रों को, ये एक बहुत बड़ा सुगमता प्रदान करता है। शिक्षा से वंचित और बहुत सुदूर स्थित व्यक्ति भी जहां तक इंटरनेट पहुंच जाता है, तो ये दीक्षा पोर्टल उसको डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा टूल है।
0: श्रोतो, पीएम ई विद्या योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभार्थी कुछ विद्यार्थियों से उनके अनुभव हमने जाने। प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के माध्यम से स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपने शिक्षा को पंख दे रहे हैं हमारे युवा। इस योजना के लाभों के संदर्भ में हमें जानकारी देते हुए आप हैं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से एमए के छात्र सौरभ द्विवेदी।
2: कई बार ऐसा होता था, मुझे अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाता था। कुछ थिंकर्स ऐसे आ जाते थे कि जिनको मुझे बुक में भी उनका मतलब क्लियर कट नहीं मिलता था कि क्या उनने रिसर्च की है। मुझे रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनने क्या की है, क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में लिखना है। तो इसके लिए मैंने स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं जब स्वयं पोर्टल पर जाता हूँ तो मुझे जो भी टॉपिक से रिलेटेड मैटर चाहिए होता है, तो मैं उस पर सिर्फ टॉपिक का नाम डालता हूँ, उसमें पार्ट बाई पार्ट आ जाता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कई जगह ऐसा मिलता है गूगल पे, जैसे हम लोग ट्राई करते हैं तो उसमें प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, दो तीन लाइन मिलेंगी फिर यहाँ वहाँ का दे देंगे। पर स्वयं पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम टॉपिक का नाम डालेंगे जैसे, तो उसमें हम उसकी प्रस्तावना, उसके उपसंहार, उसकी विभिन्न प्रकार की हेडिंग, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी आलोचनाएं, हमें सभी चीजें स्वयं पोर्टल पर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाती है, जिसको पढ़ने में समझने में काफी सरलता होती है। और सबसे अच्छी बात एक मुझे ये लगी कि स्वयं पोर्टल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, एक बार पढ़ने में ही वो हमारे माइंड में आ जाती है।
0: सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे स्वयं पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जो नए विद्यार्थी से जुड़ना चाहें या जो भी हमारे नागरिक स्वयं पोर्टल से जुड़ना चाहें कैसे जुड़ सकते हैं?
2: ये स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आजकल देखिए सभी के पास एंड्रॉइड फोन तो होता ही होता है, लैपटॉप हो तो अच्छी बात है। यदि नहीं है तो हम अपने एंड्रॉइड फोन में गूगल ओपन करेंगे या गूगल क्रोम ओपन करेंगे, उसमें जाकर हम स्वयं पोर्टल लिख देंगे सीधा। उसकी जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है, उसको जैसे ओपन करेंगे तो एक नीचे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है लॉगिन का। यदि आप पहले से स्वयं पोर्टल पर एनरोल हो तो आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। यदि आप नए यूजर हो या पहली बार आईडी बना रहे हो तो इसमें ऑप्शन आता है साइन इन का, तो इसमें हम साइन इन अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालकर हम इसमें साइन इन कर सकते हैं और अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। उसमें हमें एक आईडी पासवर्ड मिल जाती है, कभी भी कहीं भी किसी भी फोन में उसको लॉगिन कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर से उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो भी हमारे डाउट है, जो कॉन्सेप्ट है, हम उसे क्लियर कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो सौरभ, पीएम ई विद्या के अंतर्गत आपने स्वयं पोर्टल की बात की है, कैसे आपकी पढ़ाई में मददगार साबित हो रहा है, आपको क्या क्या लाभ हो रहे हैं पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से?
2: पीएम ई विद्या के स्वयं पोर्टल के माध्यम से मुझे लाभ, सबसे ज्यादा लाभ ये हो रहा है कि मैं कहीं पर भी, जैसे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी में किसी काम से आया हूँ, मैं बुक नहीं लिया हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं तुरंत अपने फोन में लॉगिन करके स्वयं पोर्टल में आईडी लॉगिन करके कुछ भी पढ़ सकता हूँ। स्वयं पोर्टल पर हम जाते हैं तो हमें पूरा प्रॉपर मिल जाता है, तो इससे हमें प्रॉफिट है, हम कहीं भी कभी भी पढ़ देते हैं और एग्जैक्ट आंसर मिलता है।
0: विद्यार्थियों

0: कैसी मददगार है उनकी पढ़ाई में या उनके और आगे बढ़ने में? हमारा पीएम ई विद्या और स्वयं पोर्टल
1: विद्यार्थियों के लिए पीएम ई विद्या बहुत ही मददगार है। पीएम ई विद्या के माध्यम से कई पोर्टल भी हैं इनके, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ जो मैंने अभी तक उसका उपयोग किया है स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में हमें मददगार ये है कि न तो उसमें कोई हमारा पैसा लग रहा है अलग से, न कोई बुक लेनी है, न बैग में कोई वजन हो रहा है, और हम कहीं भी डिजिटल रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटलता को अपनाएं, हम डिजिटल हूँ, हम जितने ज्यादा डिजिटल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा।
0: श्रोताओं, पीएम ई विद्या योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें और अधिक समावेशी शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना पीएम ई विद्या योजना से जुड़े और अपने सपनों को पंख दे। इसी के साथ ही डगर विकास के कार्यक्रम का आज का ये अंक अब संपन्न हुआ। सहयोगी राजेंद्र हिरवार और प्रस्तुतकर्ता रविन्द्र कुमार प्रजापति। योगदान आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुछ ना कहो इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत था शंकर एहसान लॉय का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, सेंड में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स पप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
2: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: एक जमाने से कहा

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिट।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुड्ढू,
4: वॉल ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: ओ तू समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश के अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चाहे स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे।

0: की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा केलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक,

तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSE deploys team of cyber security experts to secure on-mark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 killed in a blast at a building storing explosives in Namkhon town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinches men's doubles title of Singapore Open Badminton Tournament. And in IPL cricket, high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru underway in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program, Mann Ki Baat on Akashwani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming.
1: केरलम के आलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the layer of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers.
1: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रूपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।

0: expressed concern over security vulnerabilities along the India-Bangladesh border, saying that unfenced stretches of the border pose a threat to national security. The governor was speaking to the media at Bagh Dogra before attending an event in Siliguri. He also stressed the need to strengthen security along the strategically important Chicken Neck corridor that connects the northeast with the rest of the country. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. More from our correspondent.
1: The Bharatiya Janata Party has secured a major victory in Himachal Pradesh municipal corporation elections, winning Dharamshala, Solan and Mandi. The Congress Party has won the Palanpur municipal corporation. In Dharamshala, the BJP won 11 of 17 votes, while Congress secured 5. In Solan, BJP won 10 votes and Congress 6. In Mandi, BJP dominated with 12 of 14 votes, while Congress won 1. In Palanpur, Congress secured a clear majority with 11 of 15 votes, while BJP won 4. Counting of votes for Jila Parishad and Panchayat Samiti elections has also been completed. By held without party symbols, both BJP and Congress have claimed victorious of their supported candidates. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan today said that political leadership is one of the most demanding fields of public life and stressed that constructive criticism must remain fair and balanced. The Vice President made these remarks while inaugurating the 140th Foundation Day celebrations of the Deepika Malayalam Daily and presenting the Deepika Excellence Awards at Kottayam in Kerala. He emphasized that journalism should highlight stories of hope, innovation, compassion and scientific progress, noting that such constructive reporting strengthens public confidence and inspires the youth towards nation building. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said, India has transformed from a technology follower to a technology leader over the past 12 years. Speaking in a podcast with Doordarshan News, Dr. Singh said the country is playing an increasingly important role in the development of frontier technologies and helping shape the future of global innovation. On artificial intelligence, the minister said, India is adopting a balanced approach by combining human expertise with AI-driven systems to enhance efficiency and innovation. In Himachal Pradesh, 8 people lost their lives after their vehicle fell into a deep gorge in the Chamba district. The accident occurred on the Bairagarh-Sach Pass Killer Road in the remote Chura subdivision. The deceased include 7 tourists from Chhattisgarh and the driver of the vehicle. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kongtup in Namkham Township. Rescue operation is underway. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Ta Ang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. In France, a total of 219 people have been injured and over 780 people have been arrested due to clashes between football fans and police across the country following the victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in the Champions League final held at Budapest in Hungary. The Interior Minister said security forces are responding firmly to control the situation. In badminton, India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched the men's doubles title in Singapore Open today. The duo defeated Indonesian combination of Muhammad Shohibul Fikri and Fajar Alfian 18-21, 21-17, 21-16 in the final to win their first title in 2 years. The Indian pair had won the Thailand Open in May 2024. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia has congratulated the Indian men's doubles pair on winning the Singapore Open title. In IPL cricket, the high voltage summit clash between Gujarat Titans and defending champions Royal Challengers Bengaluru is underway at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. Put into bat, Gujarat Titans were 143 for 7 in 18.4 overs when reports last came in. Earlier, Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Gujarat, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and West Madhya Pradesh tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Bihar during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi lauds efforts of individuals towards nature conservation, solving local problems and other social causes. Also compliments record-breaking performances by emerging athletes in national sports events in Mann Ki Baat program on Akashwani. CBSA deploys team of cybersecurity experts to secure OnMark portal for evaluation of class 12 answer sheets. BJP wins 3 out of 4 municipal corporations in Himachal Pradesh civic body polls. Over 45 people killed in a blast at a building storing explosives in Namkhan town of Myanmar. India's Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinch men's doubles title of Singapore Open badminton tournament. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफ़ुज़, मकामी मुश्किलात को हल करने और दिगर समाजी मकासिद के तहीं अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेल कूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मादे के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बहुत से शहरियों की समाजी मकासिद के तहीं उनके गैर मामूली ताबुन पर तारीफ की है। उन्होंने इन शहरियों के तहरीक देने वाले इकदाम और हसूलियाबियों को उजागर किया। आकाशवाणी पर अपने महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने केरलम के साजी वाल शेरिल के बारे में इजहार ख्याल किया, जो एक मुफ्त स्विमिंग क्लब चलाते हैं जिससे 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में मदद मिली है। वज़ीर आज़म ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के आकाश गुप्ता की कोशिशों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मनोरमा दरिया की सफाई की मुहिम शुरू की थी, जिससे इस दरिया को दोबारा साफ सुथरा बनाने और समाज में माहौलियाती बेदारी को फरोग देने में मदद मिली। जनाब मोदी ने बाल कृष्णैया की दास्तान भी बयान की, जो गोवा के एक रिटायर टीचर हैं जिन्होंने पानी की पाइपलाइन डालने में मदद देकर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए काम किया। उन्होंने तमिलनाडु की एक टीचर गिरिजा अम्मा की सिपाहियों की बहबूद के तहीं उनके ताबुन को भी सराहा।
3: गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है।
2: खेल कूद के मैदान में भारत की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने एथलीट्स गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को झारखंड के शहर रांची में सीनियर एथलेटिक्स की फेडरेशन के कौमी मुकाबलों में नए कौमी रिकॉर्ड्स बनाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने एथलीट गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कजूर

100 मीटर दौड़ के रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में उनसे बातचीत भी की। जनाब मोदी ने मुल्क के बेशबहा सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की हुकूमत की लगातार कोशिशों के बारे में भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में मल्हार के मकाम पर पवन वंशी संतलत के मक्के महारिषि बलार्जुन से मुतल्लिक छठी और सातवीं सदी की तीन नायाब तांबा प्लेट

0: व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: वजीर आजम ने नीदरलैंड्स के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया, जिसके दौरान चोल अहद की कदीम तांबा प्लेटों को वापस भारत के सुपुर्द करने की एक खसूसी तकरीब मुनद की गई। उन्होंने कहा कि इन बेशबहा फनपारों को वापस किए जाने से लोगों में, खासतौर पर दुनिया भर में, तमिल बिरादरी को फख्र महसूस हुआ है और उनमें जोश जज्बा पैदा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि इन ताबा प्लेटों से चोल सल्तनत की हसूलियाबियों और समंदरी ताकत के बारे में काबिल कदर गहरी मालूमात फराहम होती हैं। वजीर आजम ने नमामि गंगे पहल के तहत तहफुजाती कोशिशों को भी सराहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नहर में फंसी हुई गंगा की डॉल्फिन को कामयाबी के साथ बचाए जाने का जिक्र किया, जिसमें गंगा डॉल्फिन को बचाने वाली भारत की पहली एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि ने आज कहा है कि ख्याल और कार्रवाई में इख्तरा से फौजी सलाहियतों को फरोग हासिल होगा। मुल्क के नए CDS की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए जनरल सुब्रमणि ने मुसल्लह फौजों, सनात, तालीमी इदारों, स्टार्टअप्स और तहकीक के इको निजाम के माबैन मजीद इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया, जो जदीदकारी के लिए बुनियादी हैसियत का हामिल है। साबिका फौजियों और वीर नारियों के बहबूद के तई मुसल्लह फौजों के पाबंद रहने की बात दोहराते हुए उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुसल्लह फौजें खुद को वक्फ करते हुए हिम्मत, इज्जत और पेशेवराना महारत के साथ मुल्क की खिदमात अंजाम देती रहेंगी। आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सब्जादार में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने नेशनल वार मेमोरियल पर गुलदायरा भी नजर किया। DRDO की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी ने आज हरियाणा के जिले पंचकुला में वाकई रामगढ़ में अपनी तनसीब पर एक ताकतवर बम का कामयाब तजुर्बा किया है। ये जामे हिफाजती इंतजाम के दौरान भारतीय फजाइया के सीनियर अफसरान की निगरानी में अंजाम दिया गया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में भारत टेक्नोलॉजी फॉलोअर से एक टेक्नोलॉजी लीडर बन गया है। दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में बात करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मुल्क जदीद तकनीकों की तरक्की में मुसलसल अहम रोल अदा कर रहा है और आलमी सतह पर इख्तिराआत को नई जहत देने में मदद कर रहा है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारों की साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की एक टीम को ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, जिसे 12वीं जमात के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने के लिए इसके ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM निजाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इस निजाम की खामियों की निशानदेही कर ली गई है और इनका किस तरह कोई गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में BJP ने बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में 4 में से 3 इदारों पर जीत हासिल की है। इन इंतखाबात में डाले गए वोटों की गिनती आज की गई, वोटिंग 17 मई को कराई गई थी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में शानदार जीत हासिल की है। उसने धर्मशाला, सोलन और मंडी सीट जीत ली है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पालमपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीट जीती है। धर्मशाला में BJP ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 5 वार्ड में जीत हासिल की है। सोलन में BJP ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड हासिल किए हैं। मंडी में BJP ने 14 में से 12 जबकि कांग्रेस ने 1 वार्ड में जीत हासिल की है। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 वार्ड में से 11 वार्ड में वाजिब अक्सरियत हासिल की है, जबकि BJP ने 4 वार्ड जीते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती भी मुकम्मल हो चुकी है, अगरचे ये इंतखाबात पार्टी निशान के बगैर मुनक़द हुए थे। ताहम BJP और कांग्रेस दोनों ने अपने हामी उम्मीदवारों की कामयाबियों का जिक्र किया है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि ओडिशा, मिजोरम,

सिक्किम और मणिपुर में खसूसी तफसीली नजरसानी एसआईआर के तीसरे मरहले के तहत नंबर शुमारी का काम शुरू हो गया है। कमीशन ने बताया कि उन सभी अहल वोटरों को जिनके नंबर शुमारी फॉर्म इंतखाबी रजिस्ट्रेशन दफ्तर को 28 जून को या इससे पहले मौसूल हो गए हैं, चुनाव फहरिस्तों के मुसवदे में शामिल किया जाएगा। एसआईआर का मकसद यह है कि कोई अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से न रह जाए और कोई नाअहल शख्स चुनाव फहरिस्त में शामिल न रहे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर नेज बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज अगरतला में एक बड़ी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब रेड़ी पटरी वालों से मुतालिक प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वानिधि स्कीम के 6 साल पूरे होने के मौके पर मनाई गई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने रेड़ी पटरी वालों को रुपए पैसे के डिजिटल वसीले से किए जाने वाले लेन देन को फरोग देने और माली तौर पर खुद किफालत के लिए कर्जों के चेक और QR कोड वाले क्रेडिट कार्ड तकसीम किए। मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि ने आज भारत बांग्लादेश सरहद पर हिफाजती खामियों पर तश्वीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरहद पर जिन जगहों पर बाढ़ नहीं लगी है उनसे कौमी सलामती को खतरा लाहक है। गवर्नर मसूफ सिलीगुड़ी में मुनदा तकरीब में शिरकत से पहले बागडोगरा में मीडिया से खिताब कर रहे थे। गवर्नर ने कहा कि मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद से तकरीबन 300 किलोमीटर इलाके में कई साल से बाढ़ नहीं लगी हुई है क्योंकि रियासत में सादिखा TMC सरकार ने सरहद पर बाढ़ के लिए जमीन BSF के हवाले नहीं की थी, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे हसास जिले मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दफाई एतबार से अहम चिकन निक राहदारी पर भी हिफाजती इंतजाम मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। यह राहदारी शुमाल मशरकी खित्ते को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाती है। महाराष्ट्र के गवर्नर विष्णुदेव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर को उनके 301वीं यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में लोकभवन में गवर्नर विष्णुदेव वर्मा ने अहिल्या देवी होलकर की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत नजर किए। इस दौरान वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर जिले में चमुंडी के मकाम पर अहिल्या देवी होलकर यादगार का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। म्यांमार के शुमाल मशरकी हिस्से में एक इमारत में हुए धमाके में 45 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलाआत के मुताबिक इमारत में कानकनी में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मादे रखे हुए थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नामकम टाउनशिप के कांगटूब गांव में दोपहर में हुए धमाके में तकरीबन 70 अफराद जख्मी हो गए। ये इलाका चीनी सरहद से करीब 3 किलोमीटर जुनूब में वाकई है, जहां तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल है। ये एक मुसल्लह ग्रुप है जो म्यांमार की मरकजी हुकूमत के साथ महाजारा है। जय हादसा पर पहुंचे राहत और बचाव काम पर मामूर एक अहलकार ने बताया कि 6 बच्चों समेत 46 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम अभी जारी है। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और मगरबी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मगरबी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और झालाबारी का इम्कान है। महकमे ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी राजस्थान में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे और बिजली चमकने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने आज सिंगापुर ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजर अल्फियान को 18-21, 21-13, 21-16 से शिकस्त दी। इस तरह उन्होंने 2 साल में अपना पहला खिताब जीत लिया। आईपीएल क्रिकेट के अहमदाबाद में जारी फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने 156 रन का निशाना रखा है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फितरत के तहफूज, मकानी मुश्किलात को हल करने और दीगर समाजी मकासद के तई अफराद की कोशिशों को सराहा। उन्होंने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में खेलकूद के कौमी मुकाबलों में उभरते हुए एथलीट की रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी की भी तारीफ की। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा के जवाबी पर्चों को दोबारा जांचने के ऑनमार्क पोर्टल की हिफाजत के लिए साइबर सिक्योरिटी माहिरीन की एक टीम तैनात की है।
बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश बल्दियाती इदारों

0: में 4 में से 3 बल्दियाती इदारों पर जीत हासिल की है। म्यांमार के नामखम कस्बे में धमाका खेज मानते के जखीरे वाली एक इमारत में धमाके से 45 से ज्यादा लोग हलाक हो गए। भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का मर्दों का डबल्स का खिताब जीत लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में विराट टाइटंस और दफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, we now bring you the program Anugunj based on the archival inputs of All India Radio.
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
2: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रही।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा,
3: हाथ नहीं लगाना,
4: हाथ नहीं लगाना।
3: और तू, देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। हम पर बैठकर सवाल से देखना आसान, फिर खुद समाज से बनकर जीवन जीना बहुत मुश्किल।

श्रोताओ, नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।

0: फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
1: फिल्म एक्टिंग

0: भी काफी मेहनत करनी चाहिए। सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
1: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में राग सिंधिया में चतुरंग।

आज बाबरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

लोगों की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें,

वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों और गजलों में सुंदर रूप से प्रकट होती है। आइए सुनते हैं उनका प्रतिनिधि गीत, किसने बांसुरी बजाई।

सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You were listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। श्री असनापुरम येरैया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री जी वेंकट रमण से प्राप्त करने के बाद उन्होंने श्री कल्लूरी मलैया से उच्च प्रशिक्षण लिया और आकाशवाणी कड़प्पा के ए ग्रेड कलाकार के रूप में मान्यता प्राप्त की। आपने भारत के विभिन्न सांस्कृतिक सभाओं और मंदिरों में व्यापक रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपको कंची काम कोटी अस्थाना विद्वान की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवंशरीय अखिल भारतीय संगीत सभा विल ब्रिंग यू ए सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी, एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंदर। श्री असनापुरम येरैया is a renowned saxophone artist from Andhra Pradesh. He received his initial training under Sri G. Venkataramana. He later underwent advanced training under Sri Kalluri Mallayya and earned recognition as an A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of कंची कामकोटी आस्थान विद्वान।
0: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वी एन बालचंदर संगति देंगे। श्री वी एन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुचरई टी जी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट Sri Asanapurup Yerraya and Party is accompanied on special dolu by Sri V.N. Balachandar. Sri V.N. Balachandar is a renowned dolu artist from Andhra Pradesh. He received training under distinguished gurus including Sri N. Lakshmi Narayana and Tiruchirai T.V. Muthukumaraswamy Pillai. He is a top grade artist of Akashvani.
0: Sri Yerraya apne saxophone vadan ki shuruaat kar rahe hain निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचार्य की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचार्य इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निम्न कोरी युनलुरा। अब श्री यरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

अभी आप सुन रहे हैं श्री अस्मापुरम यरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है।

0: की प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सूरजानंद की है।
1: राग कीरवाणी में ये रचना
0: मिश्र चापोतार में निबद्ध है।
2: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री अस्नापुर एरैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एरैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सूरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापोतार।

0: यरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तिरुमला तिरुपति वेंकट रामना से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग जो आदि काल में निबद्ध है।
1: श्री यरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंग सेट टू आदि काल।

0: सुन रहे थे श्री असनापुरम यरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। डोलू पर संगति दी श्री वी एन बालचंद्रन ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम यरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वी एन बालचंद्रन। This program was recorded in the studios of Akashwani Kadapa and this broadcast came to you from the studios of Akashwani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में IPL क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी।